नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी

0: अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 270। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला सुनिएगा वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10:00 पिटारा में सेहतनामा। इसके अंतर्गत नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग रीमा जोशी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे से सखी सहेली। सखी सहेली के अंदर

जगत सुनेगा, अफवाहों से सावधान रहें। सखी विशेष मालिका सदानी, हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार, शरारत, मुहावरों की दुनिया, एक से इक्कीस होना। संपादक मंदाकिनी जोशी, आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है तेजस्वी कामले। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन शाम सुनिएगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे झलकी ये न थी हमारी किस्मत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक सीताराम यादव। 8:15 रात चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। नौ बजकर 30 मिनट रात आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाया गीत 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 270।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, इसलिए हम बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित है।
0: मियां तानसेन जी रचना।
1: जी, तो मियां मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद

0: सकते हैं, वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं।
1: जी।
0: यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता
1: जी, और वही मल्हार का रूप है
0: जी,
1: असली रूप है
0: जी। तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है, और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है
1: जी।
0: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
1: लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग ये जो मियाँ मल्हार या मियाँ की मल्हार है उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है, और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का
0: जी,
1: है, तो ये भी तो कुछ फर्क है
0: जी,
1: और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे
0: जी
1: तो
0: जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है।

0: वाह वाह, ये आरोह और सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है
1: जी
0: वो मुझे याद आया,
1: जी
0: वो इसी राग में निबद्ध
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही
0: हम
1: कहा।
0: अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे, जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी।
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित रामाश्रय झा जी की
0: जी
1: हैं, और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मोह बिरहीन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, और क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब
0: जब पावस
1: पावस ऋतु
0: ऋतु,
1: आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे,
0: वाह वाह वाह वाह, हाँ हाँ
1: तो वियोग की का
0: जी
1: साहित्य है, और उसमें कितनी सुंदर
0: सुंदर
1: उलाहना दी
0: है
1: है
0: जी
1: बादल
0: जी
1: को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते
0: जी
1: हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
0: जी आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में,
1: जी
0: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल, मतलब?
1: जी गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आप को हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में।
1: जी, ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है, और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार है, बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए, ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर बूंद झमाझम किशोर, राम रंग अटा झरे भीगी अमोल चुनरिया।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जय, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

मकबरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार अनिल विश्वास। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार को। लीजिए अब सुनिए फंटूश फिल्म का ये गाना जिसे किशोर कुमार ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और एस टी बर्मन ने तर्ज बनाई है।

0: शैलेंद्र ने गीत लिखे हैं और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।
1: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे भाई निकल

कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई निकल के आ घर से दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के

0: अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा, टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मर्सिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से।
1: ऐसी वंशिया
2: हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज
1: बजाई। श्यामा सुध बिस राई करे तररे तररे ररे
3: भूल गया यार
1: तररे तेरे रे तेरे रे रे रे ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा भप्पा ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए।

दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है।

0: दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा।
2: किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन एसटी बर्मन का था और फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। भूली बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: फिर स्वागत है अंतराल के बाद।
1: हो

0: मुनीम जी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की, आवाज थी साहिल लुधियानवी के, बोल थे एसटी बर्मन की, तर्ज थी। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
4: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
3: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
4: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
5: सखी सहेली।

की हवा निकल गई।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था। आज सुरों के जादूगर महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती है। उनकी आवाज को सादर नमन। सुनते हैं अधिकार फिल्म में गीत।

0: पगड़ी, उसके सर पे दुनिया गोरख धंधा, गुरु घंटाल सभी से कहते झपट के डालो फंदा। नमक मिर्ची गरम मसाला, कपड़े वाला जूते वाला, सब में है गड़बड़ घोटाला, दूध में पानी दवा में पानी, सब में रगड़म रगड़ा, कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पकड़ा, हाँ पंजा छक्का सत्ता अट्ठा, पैसे की है लठम लट्ठा, पैसा बनाए भैया भाभी चाची और चाचा जी।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये अधिकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीतकार थे अनिल विश्वास।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का।

बहार फिल्म का गाना आप किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।
1: सखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था और एसटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। किशोर कुमार की आवाज में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की गायकी में सौंदर्य भाव ऊर्जा शरारत और संवेदना का ये अनूठा संगम जो बरबस ही दिलों को खींच लेते हैं आकर्षित करते हैं। उनकी जयंती पर इस अनूठी आवाज को सादर नमन के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म कभी कभी में किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे खयाम। हम हैं राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की।

0: जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय बहुत छोटे से अंतराल का।

ये दुनिया वाले पूछेंगे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना था। कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुने धर्म कर्म फिल्म का ये गाना, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर टी वर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में आक्रमण फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

0: के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम

0: 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के चार और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने चार और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट।

0: ग्रांट डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, उनकी सफाई करना, घूमना, फिर से वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं ना कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का

0: मधुश्री, चिन्मयी, अंचल सेठी और वैशाली की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल की बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में ये गीत।

0: सत्यमेव जयते टू फिल्म का गाना आपने सुना, आवाजें जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और संगीतकार थे रोचक कोहली।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह की आवाज थी, गीतकार थे दिव्या निधि शर्मा और संगीतकार राम संपत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की। कुमार ने इस गीत को लिखा था और मीत ब्रदर्स ने धुन बनाई थी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की थी, समीर अनजान के बोल थे। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी के जान से, कमल खान और पलक मुछाल की आवाजों में। वो गीत आपने सुना था शबीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। अब आपको चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

0: अरमान खान और साथियों की आवाजों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज से। गुलजार के बोल थे विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें। ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए। गुलजार के बोल हैं विशाल भारद्वाज का, संगीत है

साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आगे दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।
1: अरे हाय हाय हाय,

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोरदाकी अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

ईश्वरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

0: किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।
1: कोई

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: सेहत नामा।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी,
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी,
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात,
3: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है
2: जी,
3: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
3: अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
3: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी, जी,
3: जब तक कि अपनी जिंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
2: जी, जी।
3: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
3: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके, उसको भी ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
3: सभी के लिए अभी ऑपरेशन है और सभी के अच्छे उसके,
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
3: जांच में पता
2: हो रहा है।
3: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह?

0: पेशेंट को पता नहीं चलता, या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी,
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी,
0: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी मेरे दोस्त की मदर इन लॉ जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो व्हाट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, इतना अर्सा हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था।
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है।
1: जी,
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको तोड़ के निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी जी,
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है।
1: जी,
0: क्योंकि क्या होता है, वो एक पके हुए फल की तरह, पका हुआ

0: फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही? अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत जरूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी की वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें, वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
1: जी
0: आंख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है,
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम किस
0: जी
1: तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है, वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टी टी टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी।

0: काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह है, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि
0: ये
1: ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं,
0: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: जी।
0: उसकी आंखों में उड़ता है
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आईज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खासतौर
0: आंखों
1: पर।
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग।
0: फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो।
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं।
0: ना ना नो नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
1: हाँ
0: कहीं
1: वो
0: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया हो।
0: हाँ काफी टाइम होता है, काफी
1: जी
0: टाइम होता है आंखों में, जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है,
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
0: जरूर
1: से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात
0: जरूर।
1: करते हैं।

0: साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है, आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है। ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है
0: तब
1: जिसको,
0: होता है।
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
1: सबसे
0: उसका भी
1: ज्यादा
0: आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए,
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है,
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आंख को साफ कर रहा है। तो
0: जी
1: जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: छींटे।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी भी
0: ऊपर?
1: परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है आंख को पानी मारने में, आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं। जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है। अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
0: ओके,
1: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख ले।

0: हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
1: जी
0: लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत
1: जाइए।
0: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
1: हाँ
0: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
1: जी
0: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे वो बहुत जलता था,
1: जी जी
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
1: हाँ,
0: तभी,
1: लड़कों को भी,
0: हाँ लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और
1: लड़कियों
0: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
1: जी
0: सेफ है लेडीज के
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: जो बाहर से लगते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस
0: वहां पे लगा दी, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
1: हाँ
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को,
1: जी
0: सोचिए आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ
1: क्योंकि
0: आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है, बहुत
1: जी
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता, वेरी
1: जी
0: सिंपल।
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी,
1: और
0: और
1: ये
0: मुझसे
1: हमें
0: कहा
1: पता नहीं
0: गया है
1: था कि ये
0: कि
1: खतरनाक।
0: योग में ये करते हैं। मैंने आई
1: हाँ
0: टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है, आंख
1: जी
0: बंद करके ठंडे पानी मारी है, इफेक्ट वही है। आप
1: हाँ,
0: रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे नहीं
0: आंखों की
1: मारने।
0: वजह से नहीं। हाँ और वो क्या करते हैं आप, वो स्पा में जाइए कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या? आंख बंद कर रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आपको आराम आ रहा है।
1: जी
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी
1: सही
0: वाली
1: है
0: रखेंगे
1: सही है
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी
0: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं आप? बर्फ लगाते हैं ना,
1: जी
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया,
1: तो
0: आप
1: कुछ
0: गिर
1: ठंडा
0: गए तो
1: लगा
0: पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना।
1: जी
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी,
1: है
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट।
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर,
1: खामोशी फिल्म का गाना। हमने
0: हाँ
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी।
1: टुडे, और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था,
0: जी
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं,
0: ओके।
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25 दिन तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है,
0: जी।
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
0: जी
1: डायबिटीज
0: जी
1: का।
0: जी जी
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो
0: जी
1: ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे, तो

0: तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतियाजल्दी आ सकता है, ग्लॉकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं,
1: जी
0: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
1: जी जी
0: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
1: जी
0: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
1: ऑफ कोर्स
0: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है, जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला देते हैं। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी,
1: बिल्कुल
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन
1: जी
0: के दौरान।
1: जी जी
0: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे
1: जी
0: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया,
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी का बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई
1: जी
0: डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है,
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वॉज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है,
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में हुआ है, मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारण ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है, जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो
1: तो
0: लीकेज
1: ब्लड
0: किस
1: निकल
0: चीज का,
1: आएगा।
0: ब्लड निकल आता है, तो
1: जी
0: ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है, वरना हमको सारी खुश अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां के कुछ कुछ

0: नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन है तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी,
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशंस, इंजेक्शंस, ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर।
1: जी
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है।
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है।
1: जी
0: ये क्योर नहीं होती
1: बिल्कुल
0: अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।
1: जी
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि आई यार ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह
0: जी।
1: सकें और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें
0: जरूर।
1: करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रेस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ, एक और चीज जो लोगों को देख, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे। सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल। ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आके वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है, काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है?
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है। डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस। तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है। एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो, एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा।

0: तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी,
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के? अच्छा
0: लक्षण कम दिखाई देता है और कोई नहीं,
1: जी,
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है। तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली। या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हाल चाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में,
1: उसमें हो
0: देखिए
1: नहीं सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी जानते
1: बिल्कुल
0: हैं, वेदर
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात
0: आप
1: है,
0: जानते हैं ना,
1: बिल्कुल,
0: वापस जाइए, वापस 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस,
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल,
0: इमेज है, अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधी
0: हम
1: होती
0: एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम उल्टे हैं। अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है, क्या यार,
1: कमाल है
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां से
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: गया
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव केप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक, उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर
0: क्योंकि
1: साहब, एक आखिरी सवाल है,
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो
1: सेल्फ
0: जरूर डालिए।
1: मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी,
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू या मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि

0: आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं। बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक। शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। ये इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है?
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए। इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी
0: सोचिए इसके बारे में। हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं। कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे। फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो
1: नो
0: शॉर्टकट्स इन लाइफ।
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ। बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजा
0: थैंक यू।
1: अध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: नहीं,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो
1: जी
0: इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कलाम मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह,

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजें।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: पर्वती खान की आवाज, एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने

0: के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू,
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी,
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
0: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
0: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी,
0: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
0: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
0: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी,
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी,
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी,
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी,
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी,
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी,
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी

0: भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
0: बिल्कुल
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है,
0: जी।
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो, सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार
4: सर। नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता, मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु। और मेरा नाम है इंदु।
7: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
7: सर फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
7: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
8: उठो उठ जाओ।

0: अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
1: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियाँ निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
3: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
3: उल्टा?
2: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
4: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
4: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा, अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
3: जी सर। यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
1: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
4: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
5: देखो, इतना बड़ा पेड़।
4: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
3: अरे अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और ये मशीन क्या है? चलो चलो, सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
5: माइक्रोस्कोप?
2: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
1: जी सर।
2: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
4: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ दिखाई पड़ रही है।
2: शाबाश।
3: हाँ,
4: नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
2: हाँ, आओ आओ।
4: मुझे भी देखना है।
2: देखो क्या दिखाई दिया?
4: इसमें तो बहुत सारी नलियाँ हैं।
2: शाबाश, बिल्कुल सही। लाखों पाइप हैं।
3: पाइप?
2: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
2: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
4: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
2: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
3: नहीं सर।
2: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
4: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अभी एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
6: जी है।
2: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
1: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
2: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
4: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
2: हाँ।
4: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
2: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
1: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
2: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
6: हम नहीं होते।
2: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
6: बहुत अच्छी।
2: अब से एक काम जरूर करना।
6: क्या सर?
2: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
6: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
2: शाबाश।
7: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
8: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी, मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा, 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो? बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने

0: अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आरडी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

किशोर कुमार के उदास नगमे अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत।

0: यादें।
1: कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत की चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुड़ी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या न करे ये प्रीत।

0: कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की। पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, 1 बजे मिलेंगे हम। ये है आज की भारत और लीजिए 1 बजे मिल भी गए हम। लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मक्कन भाई छक्कन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ करनल सिंह,
0: भाई सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

0: भाई बड़के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
1: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी क्या ले बादशाह सुना दे कुड़िये, ये पुत्र देख भाई इधरा, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधरा, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
0: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा, चल बेटा, बम बम बम बम चीक चिक चाम चीक चिक बम।
0: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती यासु नोजी मोरी मोरी।
0: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
0: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे, ताक ताक ताक। काठमांडू काठमांडू गले मैं हूँ लोहा चुंबक।

0: तेरी हूँ दीवाना, पलक न गिराना तू जरा सा उठाना, आँखों का पर्दा दादा
1: चुम्बक तू कैसे भला बच बच के रहूं।

0: क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गिगिगिगिली जरा टिम्बकटू मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ जा के तुझे ले, चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरूर सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अभी गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: सुनो सुनो चल।

0: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम,
1: जय गोविंद जय गोपाल।
0: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार, बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
2: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: ना मेकअप
1: कदम
0: कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश था

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग। यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का।

0: ए बी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए बी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए बी हक्का।
1: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
0: चाहे हम चाहे तुम कल की है खबर किसको। चाहे हम चाहे तुम कल की है खबर किसको। समझे।

में। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, और सोनिया मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप? मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गाय नगमे मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर दा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएं। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोर दा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

देखी दिल्ली की एक लड़की जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर

0: पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगें लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। जाते ही झुके सलाम बजाया डैडी को, दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
2: चाय पिलाओ

0: सितार।
1: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
2: कहने लगा
3: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बक्सर भारी, उसका

0: बम्बा
1: बम्पी बम्पी बम्पी बम।
0: कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ दिल फेल हुआ हाय हाय रे
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू होनोलुलू।
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय नटखट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

0: भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं? और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।
1: निकल के आ घर से अरे भाई, निकल के आ घर से दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई।

0: छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई
0: अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से दुनिया।

0: मत गा, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से।
1: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
0: फूंक फूंक कर चूल्हा

बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरे की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी काहे होत उदास। एक

चार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी है है है बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी एक रोज हमारी भी दाल गलेगी।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखती हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममता मई मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने, पीने, डरने, सोने, जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात ना मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं ना कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

तो घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।

0: ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
2: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
3: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
4: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न

0: दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा।

0: चल के तुझे।
1: एक रास फिल्म का गीत सुना आपने और अब दूर गगन की छाओं में फिल्म का गाना।
0: गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: लग रही हो?
1: जी
0: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में, वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
1: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
0: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती हैं।

0: वो भी एकदम हरी भरी हो जाती हैं,
1: हाँ।
0: और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हैं,
1: हाँ,
0: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
1: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
1: बिल्कुल, तो आज के विषय बता दे ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा ले।
0: बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
1: संबंध खराब हो जाते
0: और
1: हैं
0: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान की कच्चे कहावत है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान की कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
0: बिल्कुल
1: है।
0: उसकी आप जांचें, उसे
1: परखें।
0: और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
1: रखना पड़ता
0: क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे, 1 से 21 होना।
1: अरे 1 से 11 होना तो हमने सुना
0: हाँ,
1: है,
0: ये अलग है।
1: 1 से 21 होना और भी बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए इस पर ये हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
1: देखते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना जो हमें बिल्कुल याद रह जाती है। तो
1: और कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब ये छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर बंद नहीं लिखा है ना, कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने क्या शरारत की आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये आप लिख सकते हैं।
0: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी या अपने पोते पोतियों का बचपन,
1: या आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है।
0: जी बिल्कुल, और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात करेंगे।
1: इनके बारे में बात करेंगे, तो चलिए अब सावन
0: को एंजॉय आनंद उठाते हैं।
1: हाँ चले करें।
0: बिल्कुल,

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है। और खैर, सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की
1: जी
0: फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती, कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति
1: बिल्कुल
0: के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं, या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं।
1: जी
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे, हम किस
1: जी
0: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या कुछ तरीके की
0: हाँ,
1: चीज़ें होती हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा
1: ऐसे
0: आपने
1: हादसे हो जाते हैं।
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठ या भ्रामक जो जानकारियां हैं, वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें, या झूठे संदेश हैं, या संपादित तस्वीरें हैं, या पुराने वीडियो, या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है, तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता
1: बिल्कुल
0: है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे, या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे,
1: जी
0: लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं, उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है, वो सही है भी या नहीं।

0: बिल्कुल, और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
1: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
0: जी
1: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
0: बिल्कुल
1: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।
0: जी,
1: इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
0: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
1: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं, और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए, और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है।
0: जी
1: चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम
0: बिल्कुल,
1: में।
0: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती, अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए,
0: हाँ
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके
0: सही
1: के
0: कहा। हाँ हाँ
1: जी।
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी। बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो

0: हैं जो उनकी त्वचा है जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था। और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी
1: है।
0: आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
1: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी
0: जी
1: माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस
0: जी
1: बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई।
0: जी
1: चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं आती।
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती तुम चौंक गई ना।
0: हाँ। क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
1: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
0: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन के जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापिस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई। और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार

0: करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई।
1: अच्छा,
0: उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता
1: जी
0: धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल
0: करते
1: आराम
0: थे
1: से
0: और बच्चे भी
1: जी,
0: खा लिया करते थे। हमने भी बहुत
1: बहुत बहुत
0: ये
1: मार खाई है
0: धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन
1: जी।
0: मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे। कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कैसे कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था,
0: हाँ,
1: लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस
0: अरे
1: समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद
0: हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार
1: जी।
0: हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं
1: डर
0: वो डर
1: जाते
0: जाते
1: हैं
0: हैं ना।
1: जी।
0: हाँ, एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, ये दोनों बातें बता रही है।
1: अच्छा
0: उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर। लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और
1: ओहो।
0: उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं, और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है। लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का
1: जी।
0: करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते
1: बिल्कुल
0: थे ना,
1: बिल्कुल।
0: सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे,
1: हाँ, अरे
0: 1 रुपए
1: बहुत।
0: का, 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी
1: जी
0: कई
1: बिल्कुल
0: बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं
0: हाँ, शरारतें
1: जी
0: भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है
1: जी
0: और उसका भुगतान माता-पिता को करना पड़ता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
0: शरारते तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना
1: बिल्कुल यही
0: हमारे
1: करते हैं ना कि फिर सबको मत लेके जाओ, एक आध सिर्फ एक
0: लेके जाओ और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत
1: जाओ
0: होता है आरती।
1: कि हमें नहीं लेके जाया जा
0: हाँ,
1: रहा
0: हमें
1: है
0: नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे
1: जी
0: क्या क्या हरकत कर लेते हैं। लेकिन ये बचपन है।
1: बिल्कुल
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था। हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी। जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके, तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकल कर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको

0: भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी
0: नहीं
1: कभी
0: दिया,
1: डांट भी पड़ी होगी, कभी
0: हाँ
1: कभी मार
0: मार
1: भी
0: भी
1: पड़ी
0: पड़ी
1: होगी
0: होगी।
1: जी।
0: हाँ
1: अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने।
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते।

0: और हमें बहुत ज्यादा बोलते
1: बच्चे मन के सच्चे, है
0: थे
1: ना, यूं ही नहीं कहा गया बच्चे इतनी शरारत करने के बाद। जब भी
0: जी
1: कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई।
0: ये
1: तो
0: तो
1: मुझे इतना आश्चर्य
0: जी
1: हुआ कि देखिए बच्चे वाकई
0: जी
1: अद्भुत होते हैं। और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं
0: बिल्कुल
1: कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट
0: जी
1: पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी, लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई।
0: ओहो
1: माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई।
0: जी
1: ये बात भी सही है,
0: नहीं
1: आज जब
0: बिल्कुल
1: ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
0: जी, बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती हैं चीजें।
1: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना
0: जी
1: मना किया था तुम्हें फिर भी
0: जी
1: तुम कहना नहीं मानते। तो
0: बिल्कुल।
1: ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं
0: एक
1: श्रोता?
0: हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था, गांव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा, भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था। और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना। और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौके जो है जेब में भर लेना। तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो
0: जी
1: ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
0: बिल्कुल। अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें थोड़ा
1: निकलना पड़ेगा
0: जी।
1: और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है,
1: बिल्कुल।
0: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना,
1: हाँ
0: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना,
1: हाँ, क्यों
0: तो ये
1: नहीं।
0: उन्नति ही तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
0: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
1: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है, 1 और 1 11 का तो हम अक्सर
0: जी
1: बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो,
0: जी
1: वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है, और
1: हाँ
0: अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है वो आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये,
1: हाँ
0: पुराना ही मुहावरा है,
1: हाँ
0: लेकिन हमने
1: थोड़ा,
0: सुना कम है,
1: हाँ
0: ये
1: थोड़ा
0: प्रयोग कम होता है
1: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें
0: जी।
1: थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं,
0: जी
1: लेकिन ये 21 होना क्या है।

0: एक से 21 हो ना, तो
1: जैसे कि
0: मतलब
1: एक है, एक से सीधे हम उछल के
0: 21
1: 21 से
0: बन गए।
1: पहुंच गए
0: हाँ
1: यानी कि
0: वही,
1: उन्नति कर ली हमने
0: बिल्कुल सही बात है। वही
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि एक का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना। व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है,
1: जी
0: जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: हाँ, एक और साथी हैं जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ वही एक श्रोता लिखती है कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वहीं 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हैं हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
0: हाँ गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं, और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती
1: जी बात तो सही कही
0: तो
1: आपने
0: देखिए हमारे
1: जी
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने,
1: अच्छा
0: हर मायने
1: मायने
0: में श्रेष्ठ हो,
1: जी
0: तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है 1 से
1: जी
0: 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत,
1: जी
0: उसमें
1: शरारत
0: भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने
1: अच्छा
0: बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया, पापा ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन
1: ये
0: में किया
1: अक्सर ऐसा
0: करते थे।
1: होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े हम आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक
0: जी
1: हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं।
0: जी
1: एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था 6-7 साल का रहा हूंगा तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी ये
0: वाकई
1: लिखी
0: बहुत
1: हैं
0: आज मन
1: और
0: खुश
1: आज
0: हुआ।
1: वो एंजॉय कर रहे हैं अपना
0: हाँ
1: रिटायरमेंट,
0: हाँ अच्छा, आज
1: सोचिए
0: वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन
1: जी
0: की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत खूब, तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा पढ़ देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है। लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
3: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन ही हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी,
2: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
2: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली, उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए, और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट, मतलब

0: सुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
1: बिल्कुल
0: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल, कि
1: इंडियन क्लासिक म्यूजिक, वो युवाओं के
0: एजुकेशन,
1: बीच।
0: हाँ
1: हाँ
0: एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
1: जी
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णा मूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात
0: वो
1: है,
0: एजुकेशन जो है मैं अपनी बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
1: कल्चरल
0: विंटर्स,
1: हब।
0: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
1: त्रिवेणी
0: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
1: बिल्कुल
0: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया, कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने रिफोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई, मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या
0: करूं।
1: बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में, अलग अलग मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहाँ कोई गा रही थी, उनके घर पे वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हाँ,
0: चला गया। सुनते हैं,
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले। वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज़ कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी दैट
0: उस समय।
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात

0: कृतिक, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद
0: बिल्कुल। तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में,
1: जरूर
0: हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी
0: बिल्कुल,
1: ख्वाहिश है।
0: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू, IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे कहा था, मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा,
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस, तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब

0: तब सोलो रोल किया फुल प्ले में। वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
1: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
0: 10 साल।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: इतना सारा याद
0: म्यूजिक उससे
1: करना।
0: पहले से चल रहा था जिंदगी में। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई, मतलब हाँ, एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
1: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
0: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी
1: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: जी, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में, कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ, मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे, मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय, मतलब दिमाग
1: विजन।
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में
0: अच्छी
1: जा
0: खासी,
1: रही
0: मतलब
1: थी।
0: साइंस की जो है बैंड बज गई
1: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप, और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा,
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह, जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शंस
0: तो
1: थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा।
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब
1: तब तक
0: तक
1: तो काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ
0: तो
1: रहे
0: वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने
1: तो वो
0: देंगे।
1: सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है। बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से।
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा,
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे ये सुन
0: पापा, हाँ पापा ने
1: के।
0: ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ।

0: मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए खेते, नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
1: आप यहाँ पढ़ो मत.
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी.
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं.
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था. सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो.
1: फिर मामला टल गया.
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया.
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी.
0: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स.
1: राइट.
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई. अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं.
1: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट.
0: फुल प्लेट. अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई. इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है.
1: और ये बन गई.
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो. और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय.
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 months हम लोग फ्लोर पे थे.
1: क्या बात है. तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
0: एक है. चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है. नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में. मतलब तो मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है. और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए. और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की. और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है.
1: वाह, क्या प्यारी बात.
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट respond to the moment and listen to your co-actor and respond. उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है और उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना. उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे.
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
1: क्या बात है, क्या बात है. और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते,
0: जा हौर ता हबे.
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है. यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए. अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो आप, एक सजेशन करता
0: आप, हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे.
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं,
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है.
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं. ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
0: शंकर जी को.
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा.

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ, और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं, जब बड़े

0: से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे. एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस, और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट देन लाइक आई सेड कि आई थिंक नो पेन नो गेन.
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
1: इससे पहले बना चुकी
0: इससे
1: थी
0: पहले.
1: आप? जी,
0: हाँ, और
1: नवाज थे उसमें।
0: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है, और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में।
0: ड्रामा से. हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई, और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में
0: मतलब
1: वेनिस
0: सुपरनैचुरल
1: में?
0: स्टोरी थी.
1: सुपरनैचुरल।
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस. खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी. मैंने
1: राइट।
0: सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब. बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता. मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है. सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया.
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने.
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था. दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. उसके बाद पैंडेमिक आ गई, तो सब कुछ बंद हो गया. सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर. मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम.
1: अभी
0: पता नहीं. उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने. और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया. वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला. फिर
1: वाह
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला. केरला, मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की. अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की.
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना.
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ.
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी. पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था. मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में. पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया. मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है.
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे।

0: कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात

0: गाना गाते थे और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6 साढ़े 6 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म,
1: ऑडिशन से मिली थी।
0: ऑडिशन से बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो
0: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के
1: हो,
0: लिए।
1: जिनके नाम हम नहीं लेना
0: नहीं,
1: चाहेंगे।
0: और मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया
1: क्या बात है।
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके,
1: अच्छा,

0: নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल, क्या
0: हाँ
1: बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

102.2 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

शाम ढल रही है और दिन भर की भाग दौड़ अब थोड़ी थमने लगी है और इसी सुकून भरे वक्त में रेडियो की महफिल सज रही है। नमस्कार युवा साथियों, दिन कैसा भी रहा हो, शाम हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देती है। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालें, अपनी बातें साझा करें और उन सपनों की चर्चा करें जो हमारी आंखों में पल रहे हैं, क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं, आज की ऊर्जा और आज की आवाज भी है। रेडियो के इस खूबसूरत सफर में जुड़िए, अपनी सोच को आवाज दीजिए और शाम को यादगार बनाइए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं फिरोज शाह मेहता जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े आंदोलनों और संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि उन दूरदर्शी व्यक्तित्वों की कहानी भी है जिन्होंने देशवासियों में जागरूकता, अधिकारों की समझ और लोकतांत्रिक सोच पैदा करने का काम किया। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों में एक नाम है फिरोज शाह मेहता। उनकी जयंती हमें उस दौर की याद दिलाती है जब भारत में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे आकार ले रही थी और देशवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को मुंबई यानी आज की मुंबई में हुआ था। वे एक कुशल वकील, समाजसेवी, नगर प्रशासक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें आधुनिक मुंबई के विकास और नगर प्रशासन को व्यवस्थित रूप देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में गिना जाता है। दोस्तों, वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। दोस्तों, उनका सार्वजनिक जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव केवल नारों से नहीं आता, बल्कि लगातार किए गए सकारात्मक प्रयासों से आता है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन और नागरिक भागीदारी को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि लोगों को अपने शहर और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। यही सोच आगे चलकर भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूत नींव तैयार करने में सहायक बनी। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर के प्रमुख नेताओं में से भी रहे। वे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक सुधारों की वकालत करते रहे। उनका मानना था कि जनता की आवाज को संस्थागत और लोकतांत्रिक माध्यमों से मजबूत किया जाना चाहिए। आज जब हम उनकी जयंती मनाते हैं तो इसे केवल एक महान व्यक्ति को याद करने का अवसर न माने, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन से जोड़े। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, ये हमें समझना होगा। अपने आसपास की समस्याओं के प्रति सजग रहना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हमें करनी चाहिए, कानून और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ समाज के हित में अपनी भूमिका निभाना भी लोकतंत्र की ही भावना है, ये हमें समझना होगा। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता जी का जीवन हमें यही संदेश देता है कि एक जागरूक नागरिक अपने शहर, अपने समाज और अपने देश को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उनकी जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से समझें और एक जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

0: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है, एक युवा एक संकल्प, रक्तदान बने श्रेष्ठ विकल्प, और वार्ताकार है प्रियंका दुबे।
4: दोस्तों, एक युवा एक संकल्प, रक्तदान बने श्रेष्ठ विकल्प, ये केवल एक नारा ही नहीं बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक ऐसा संदेश है जो युवाओं को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराता है। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा, उत्साह, साहस और संवेदनशीलता समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। जब यही युवा रक्तदान जैसे महान कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं तो वे केवल किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का कार्य ही नहीं करते बल्कि पूरे समाज में करुणा, सहयोग और मानवता की भावनाओं को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, रक्त एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसे किसी भी कारखाने में तैयार नहीं किया जा सकता। यह केवल एक स्वस्थ व्यक्ति में दूसरे जरूरतमंद की व्यक्ति तक ही पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा, प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताओं तथा थैलीसीमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह समान होते हैं। समय समय पर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह सामने आता है। कई बार अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण मरीजों और उनके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि समाज का प्रत्येक स्वस्थ युवा नियमित रक्तदान का संकल्प ले तो रक्त की इस कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, युवाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल अपने व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी योगदान देना है। रक्तदान इसी सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक स्वस्थ युवा अपने थोड़े से समय और साहस के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। यह सोच ही अपने आप में अत्यंत प्रेरणादायक है कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी माँ की आँखों के आंसू को रोक सकता है, किसी बच्चे के पिता को वापस ला सकता है या किसी परिवार की उम्मीदों को टूटने से बचा सकता है। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में युवाओं के सामने एक अवसर है लेकिन उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सोशल मीडिया और व्यस्त जीवन शैलियों के कारण कई बार समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम होती दिखाई देती है। दोस्तों, ऐसे में रक्तदान जैसे अभियान युवाओं को समाज से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। जब युवा रक्तदान शिविरों में भाग लेते हैं तो जागरूकता रैलियां निकालते हैं या दूसरों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, तब वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यह केवल रक्तदान तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनमें सेवा, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास भी करता है। रक्तदान को लेकर समाज में आज भी कई भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह गलत है। दोस्तों, चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान सुरक्षित होता है और कुछ ही समय में शरीर खोए हुए रक्त की आपूर्ति कर लेता है। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं ही सही जानकारी प्राप्त करें और दूसरों तक ही सही तथ्य पहुंचाएं। जागरूक युवा समाज में फैली अफवाहों और मिथक को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस जैसे अवसर केवल एक दिन का ही नहीं आयोजन नहीं है बल्कि यह समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का माध्यम है। यह दिन हमें उन लाखों रक्तदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों को केवल औपचारिक रूप से न लें बल्कि इसे अपने जीवन का एक संकल्प बनाएं। यदि प्रत्येक युवा वर्ष में कम से कम एक या दो बार रक्तदान करने का निर्णय ले लें तो देश में रक्त की उपलब्धता को काफी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, रक्तदान का महत्व

0: केवल जीवन बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और मानवता की भावनाओं को भी मजबूत बनाता है। रक्तदान करते समय न जाति देखी जाती है, न धर्म, न भाषा और न ही क्षेत्र। रक्त का रंग सभी का एक समान होता है और यही हमें मानवता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। जब एक युवा किसी अजनबी के लिए रक्तदान करता है तो वह यह संदेश देता है कि इंसानियत हर भेदभाव से ऊपर है। दोस्तों, आज के समय में जब समाज को एकता और सहयोग की आवश्यकता होती है, तब रक्तदान जैसे सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का माध्यम बनाया जा सकता है। युवाओं को केवल स्वयं रक्तदान करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने मित्रों, परिवारों और समुदाय को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से रक्तदान जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके भी रक्तदान के महत्व को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। एक जागरूक युवा हजारों लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, इसलिए प्रत्येक युवा को अपने प्रभाव का उपयोग समाज हित में करना चाहिए। दोस्तों, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रक्तदान केवल शरीर का ही नहीं बल्कि हृदय का भी दान होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी अस्पताल में एक मरीज जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो और समय पर मिला रक्त उसे नया जीवन दे दे। उस परिवार की खुशी, राहत और कृतज्ञता का मूल्य किसी भी भौतिक रूप से नहीं लाया जा सकता। रक्तदान करने वाला व्यक्ति भले ही उस मरीज को न जानता हो, लेकिन उसका यह कार्य जीवन भर आभार के रूप में उसे जीवित रखता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि युवा रक्तदान को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दें, जैसे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे ही रक्तदान के क्षेत्र में भी परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और तकनीकी समझ इस अभियान को नई दिशा दे सकती है। जब युवा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव स्वतः दिखाई देने लगता है। दोस्तों, एक युवा एक संकल्प, रक्तदान बने श्रेष्ठ विकल्प का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि युवावस्था केवल अपने सपने और सफल होने का समय नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का भी समय है। रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिनमें न कि धन की आवश्यकता होती है और न किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता होती है, केवल संवेदनशील हृदय, जागरूक सोच और मानवता के प्रति समर्पण की होती है। यदि देश का प्रत्येक स्वस्थ युवा यह संकल्प ले कि वह नियमित रूप से रक्तदान करेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा, तो न केवल हजारों लाखों का जीवन बचाए जा सकेंगे, बल्कि एक अधिक संवेदनशील, जागरूक मानवीय समाज का निर्माण भी संभव होगा। यही एक जिम्मेदार युवा का सच्चा कर्तव्य है और यही मानवता के प्रति उसकी सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था एक युवा एक संकल्प, रक्तदान बने श्रेष्ठ विकल्प। वार्ताकार थी प्रियंका दुबे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में पेड़ों की असली कीमत क्या है? हम सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेते हैं, गर्मी में किसी पेड़ की छांव तलाशते हैं, बारिश में हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है, और फिर भी कई बार पेड़ों की अहमियत को हम भूल जाते हैं। सच तो यही है दोस्तों कि पेड़ हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वृक्षारोपण केवल जमीन में एक पौधा लगाने का नाम नहीं है, यह आने वाले कल के लिए उम्मीद बोना है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वह केवल हमारे लिए नहीं बढ़ता, बल्कि आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए भी हवा, छांव और हरियाली का इंतजाम करता है। एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पक्षियों का घर बनता है, मिट्टी को थामता है और वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान देता है। दोस्तों, आज बढ़ते शहरीकरण, सड़कों के विस्तार और विकास की तेज रफ्तार के बीच पेड़ों की संख्या और प्राकृतिक हरियाली पर दबाव

दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही जब पारा सामान्य से ऊपर जाने लगता है तो हम अक्सर कहते हैं कि इस बार तो गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होता है? धरती का तापमान लगातार बढ़ने की एक बड़ी वजह है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक

उत्तप्तता वृद्धि। सीधी और आसान भाषा में कहें तो जब पृथ्वी के वातावरण में कुछ ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो धरती से निकलने वाली गर्मी का एक हिस्सा वातावरण में अधिक समय तक फंस जाता है। इसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ते वैश्विक तापमान के रूप में सामने आता है। कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक इस्तेमाल, जंगलों की कटाई और बढ़ती मानवीय गतिविधियां इस समस्या को बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों में शामिल हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का असर केवल तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध मौसम के बदलते तौर तरीकों, बर्फ के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी, सूखे या भारी बारिश जैसी घटनाओं से भी जुड़ा है। इसका असर खेती, जल संसाधनों, जैव विविधता और मानव जीवन पर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं? शायद किसी को लगे कि एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से इतना बड़ा बदलाव कैसे आएगा, लेकिन बदलाव, याद रखिए, हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। बिजली की अनावश्यक खपत कम करना, सार्वजनिक परिवहन या साझा यात्रा को बढ़ावा देना, पानी या ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक का समझदारी से इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी, पेड़ों की रक्षा तथा अधिक से अधिक हरियाली को बढ़ावा देना, ये सभी हमारी भूमिका का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों इसमें आप युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। युवा नई तकनीक को समझते हैं, नई सोच को अपनाते हैं और समाज में बदलाव की आवाज बन सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी जागरूकता से अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति बेहतर कदम उठा सकते हैं और लोगों को भी इस पहल में साझेदार बना सकते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। उन जीव जंतुओं का भी घर है जो सदियों से इस पृथ्वी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। हम इसे अपने पूर्वजों की विरासत में पाकर आए हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा केवल किसी खास दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि धरती को बचाने का काम केवल एक व्यक्ति नहीं करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का विचार है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। दोस्तों, इसी विचार के साथ अपनी रेडियो हम सफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर नहीं।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन, हम आपके आपन जलेबी भौजी आप सबके बीच आपन बने का बात साझा करे बदे समय से आगे ले। और देखें आप लोगन भी हमार जौन बात बा उ सब समझत हैं, और आप सबके भी मन में ये विचार और ये समय जरूर आयल है। और जौन बहन लोगन के बिटिया लोगन के जीवन में ये समय नहीं आयल है, ये विषय ना जुड़ल है, ओकर अगर आवे तो ओके अच्छे से समझ सके। कहे का मतलब ये कि ये बातचीत हर बहन बिटिया के जाना जरूरी बा। कहे का मतलब ये

कि एक बिटिया ही भविष्य में विवाह के बाद महतारी बने लेन। और ये बात तब सर्वविदित बा कि एक स्त्री के जीवन महतारी बनले से ही पूर्ण होवेला। महतारी बनब जितना सुखद अनुभव होवेला उतना ही बड़ी चुनौती होवेला कि बचवन के बेहतर लालन पालन कैसे करल जाए। बच्चा जन्म लेते के बाद पूरी तरह से महतारी पर निर्भर होला, कहे कि नवजात शिशु के पर्याप्त और गुणवत्ता युक्त आहार के स्रोत उनकर महतारी ही होवेलिन, जैसे बचवन के शरीर के पूर्ण विकास होवेला। एकरे खातिर महतारी के जन्म के समय छाती का पहला पीला दूध जरूर पिलावे के चाही। और देखा बड़ बूढ़ पुरनिया तक कहबे करेलन, आज अपन डॉक्टरी भी ई कहेला कि ई दूध उम्र भर खाती बचवन के अमृत समान लाभकारी होवेला। कहे का मतलब ई कि ई दूध पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण होवेला। और देखें ई सिर्फ हमरे मनसा न ह, आप सब भी ई बात के जाने लिन कि वैश्विक स्तर पर अगस्त माह के एक दिवस नहीं बल्कि पूरा सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनावल जाला। जेकर उद्देश्य यह होवेला कि जवन नई पीढ़ी के बिटिया पतोहू हैं और स्तनपान के महत्व के नहीं समझेलिन और बचवन के दूसरे घर के अन्य लोगन के सहारे या नौकरी वाली जोन बहिन हैं वो आया के भरोसे बोतल के दूध के सहारे पालत हैं, तो ओकर ओ का दुष्प्रभाव भा। ए विषय पर देखा हम लोगन आज बहुत बढ़िया जानकारी सुनल जाई। जानकारी के खातिर अपने यहाँ डॉक्टर बहिन भी आई हैं, मगर हम कहब कि बैठकी के शुरुआत काहे ना एक मन मनसायन से करल जाए, तो शारदा सिन्हा बहिन के गावल एक गीत हो जाए।

0: बहन लोगन देखा इराली ना शारदा सिन्हा बहन और करत रली हन मनमन सायन। मनमन सायन बहुत अच्छा लगल, मगर बहुत बढ़िया हम लोगन का जौन चर्चा चलत रहल है कि एक स्वस्थ बच्चा खातिर महतारी के दूध अमृत के समान बा। और हम आप लोगन के बतैली है कि आज अपन बैठकी में यही से जुड़ल जानकारी खातिर डॉक्टर दिव्यांशी से अपन बबीता बत्रा बहन बतिया थे विषय बा स्तनपान माँ और शिशु के लिए वरदान। तो ई सुनल जाए, मगर उसे पहले देखा एक ठे बात छोटा सा संदेश उहो सुन लिहल जाए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त

0: 10 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। एक नवजात की पहली मुस्कान, उसकी पहली ताकत और उसकी पहली सुरक्षा, सब कुछ माँ के दूध से ही शुरू होता है। माँ बनना ही एक सुखद अनुभव है और अपने बच्चे को स्तनपान कराना उस अनुभव का सबसे सुंदर हिस्सा। स्तनपान माँ और शिशु के लिए वरदान। आज इसी विषय पर भेंटवार्ता करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न है, स्तनपान का माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या महत्व?
1: स्तनपान प्रकृति का सबसे संपूर्ण आहार है
0: जी।
1: हर बच्चा और माँ दोनों के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। ये अगर हम बात करें महत्व की, बच्चे पे और माँ पे क्या लाभ होंगे। एक बच्चे के लिए स्तनपान तो संपूर्ण आहार है, वो उनकी रक्षा सुरक्षा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट से निकलता है, माँ की कोख से, और बाहर इतनी बीमारियां हैं, इतने इन्फेक्शन है, उनसे बचाने के लिए स्तनपान सबसे जरूरी होता है। एक संपूर्ण आहार है, पूरी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चे में, बिल्कुल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ मस्तिष्क के विकास के लिए मदद करता है। और अगर माँ पे लाभ की बात की जाए तो प्रसव के बाद गर्भाशय जल्दी सामान्य आकार में आता है। यदि स्तनपान रेगुलरली करेंगे तो प्रसव के बाद जो गर्भाशय है वो अपने आकार में आ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि माँ और बच्चे के बीच में एक प्राकृतिक रूप से संबंध और मजबूत होता है जी।
0: एक प्रश्न ये है कि जन्म के कितने समय बाद बच्चे को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए?
1: देखिए, जन्म के एक घंटे बाद जब माँ का एक पीला
0: गाढ़ा सा
1: दूध आता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो कोलोस्ट्रम एक मान के चलिए कि एक प्राकृतिक टीके की तरह काम करता है
0: जी।
1: ठीक है, तो बच्चा पैदा होने के एक घंटे के ही अंतराल में बच्चे को स्तनपान वो कोलोस्ट्रम वाला दूध देना आवश्यक होता है जी।
0: और नवजात शिशु के लिए माँ का पहला दूध वो कितना जरूरी है और कितने समय तक फिर बच्चे को मतलब फीड करना
1: जी? जी जी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि पहला दूध मानी यानी कोलेस्ट्रम बच्चे का पहला टीका माना जाता है। ये एंटीबॉडीज में भरपूर होता है, संक्रमण से बचाता है, बच्चे की आंतों को भी मजबूत करता है, पीलिया और कई शुरुआती बीमारियों का खतरा कम करने में भी मदद करता है।
0: अच्छा।
1: जी, अब ये बात रही कि कितने समय तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि एक घंटे के अंतराल में ही हमें शुरू कर देना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दे। माँ का दूध अपने में ही एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। 6 महीने तक में पानी की आवश्यकता नहीं है बच्चे को, घी शहद कोई भी मतलब पानी भी नहीं देना है, दूध अपने में पर्याप्त है। और उसके बाद 6 महीने के बाद से आप गाय का दूध, टॉप फीड, जो भी आपको देना है आप वो दे सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और 2 साल तक की उम्र तक या फिर उससे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा, आप इतने समय तक दूध दे सकते हैं माँ का बच्चे को।
0: एक प्रश्न है ये कि स्तनपान से बच्चे की सेहत पर क्या क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, स्तनपान से संक्रमण कम होता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बच्चे की बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है, दिमाग और बेहतर विकसित होता है, एलर्जी का खतरा कम होता है और भविष्य में मोटापा और डायबिटीज जैसा खतरा भी कम हो सकता है।
0: अच्छा।
1: अगर स्तनपान कराया जाए
0: और ये स्तनपान से क्या माँ के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है?
1: बहुत, बिल्कुल।
0: अच्छा।
1: बहुत जरूरी सवाल है ये। स्तनपान से जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रसव के बाद शरीर का जल्दी रिकवर होने में मदद करता है
0: जी।
1: उससे भी बड़ी बात, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, स्तनपान उसको होने नहीं देता है।
0: अच्छा।
1: स्तनपान से ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है जी। जी, टाइप 2 मधुमेह का जोखिम भी कम करता है स्तनपान।
0: डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये है, अगर महिला किसी बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कोई बीमारी है उसको पहले से चली आ रही है, तो क्या वो स्तनपान करा सकती है?
1: देखिए ये समझना जरूरी है कि बीमारी क्या है। अगर सामान्य बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार सीजनल है या फिर कोई एलर्जी है, तो स्तनपान कराने में कोई दिक्कत देखी होती नहीं है
0: जी।
1: बिल्कुल आप करा सकते हैं, क्योंकि जो दूध है उसमें एंटीबॉडीज हैं, बच्चों को शुरुआती दौर में वो एंटीबॉडीज चाहिए ही चाहिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर माँ को बीमारी है किसी

0: प्रकार की लंबे वक्त तक जैसा आपने कहा चली आ रही है, तो एक डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अपने मन से कोई भी दवा ना लें, डॉक्टर के सलाह मशवरा के बाद ही आगे प्रोसीड करें
1: जी।
0: तो किया जा सकता है, अगर सामान्य दिक्कतें हैं तो किया जा सकता है, स्तनपान कराया जा सकता है, पर अगर बड़ी लंबी दिक्कत है तो उसके लिए डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है
1: जी। कई बार ये देखा जाता है डॉक्टर साहब कि माताओं को स्तनपान में जैसे दिक्कत आती है
0: जी जी,
1: जैसे दूध कम आना, ऐसे में फिर क्या करना चाहिए?
0: देखिए सबसे पहली बात तो घबराए ना, जब हम घबराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमें लगता है कि दिक्कत है वो दिक्कत और बढ़ी हुई महसूस होती है। ठीक, तो अगर ऐसा लग रहा है कि दूध कम आ रहा है, पहले तो अक्सर ऐसा होता नहीं, अधिकांश मामलों में ऐसा होता नहीं कि दूध कम आ रहा है, कभी कभी बच्चे की पकड़ ही अच्छी नहीं हो पाती है
1: जी।
0: बच्चा स्तन को पकड़ ही नहीं पाता है उस तरह कि वो दूध आ पाए, तो इसमें परेशान नहीं होना है, बच्चे को बार बार थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं, उसको सही पोजिशन पे रखें ताकि वो पकड़ पाए, थोड़ा बच्चे की भी ट्रेनिंग लगती है शुरुआती समय में ही, और अक्सर दूध आने लगता है, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, किसी वजह से अब भी लग रहा है कि दूध कम आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ठीक है? और ज्यादा सोचे ना, अपने डॉक्टर से मिलिए और वो आपको सही सलाह देंगे
1: जी।
0: और परेशान नहीं होना है बस
1: जी। तो स्तनपान के दौरान माँ को अपने खाने पीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हो सकता है खाना पीना ठीक ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर खान पान ठीक नहीं है तो इससे माँ की हेल्थ पे असर पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर दूध का जो मात्रा है हो सकता है कम हो, ठीक है? तो खाने पीने का तो बहुत ही ध्यान रखना है, जितना बच्चे का ध्यान रखना उतना माँ का भी ध्यान रखना है, और खाने पीने को के लिए माँ को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम बात कर लेते क्या क्या आना चाहिए। इसमें दाल होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, सूप हो सकता है, पूरा साबुत अनाज, ये सारी जरूरतें हैं, पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यदि किसी प्रकार का नशा वो करती हैं तो उसको बंद करना उस अंतराल में बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
0: बस बाकी ठीक है, स्तनपान के दौरान अगर खान पान अच्छा है तो माँ की भी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी और बच्चे की भी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी
1: जी। एक अंतिम प्रश्न और
0: जी
1: है कि आज के समय में स्तनपान को लेकर
0: जी जी
1: कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं?
0: पहला तो सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि पहला पीला दूध खराब होता है। सच्चाई ये है कि वो सबसे पौष्टिक और सुरक्षा देने वाला दूध है। दूसरी गलत धारणा है कि गर्मी में बच्चे को पानी देना जरूरी है, ये बिल्कुल ना करें। 6 महीने तक माँ के दूध में ही पर्याप्त पानी होता है
1: जी।
0: बच्चे को अलग से पानी देने की 6 महीने तक में जरूरत नहीं होती। तीसरा, दूध माँ के दूध जितना अच्छा होता है, जो टॉप फीड दूध होता है वो माँ के दूध जितना अच्छा होता है ऐसा नहीं है, माँ का दूध का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मतलब जो हमने देखा है, लोगों को लगता है कि सर्दी जुखाम है जैसा हमने पहले बात की
1: जी,
0: तो उसमें दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप बिल्कुल पिला सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ्या है, लोगों की गलत फहमी है कि हम नहीं दे सकते,
1: दे सकते हैं नहीं दे रहे,
0: लेकिन दे सकते हैं। इतना आसानी से आप बच्चे को अपना इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट कर सकते दूध के रास्ते से। तो ये कुछ है धारणाएं जो थोड़ा फैली हुई है, गलत है लेकिन जी। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, बहुत एक गलत फहमी है लोगों को, कुछ परिवारों में, शायद कुछ माओं में, कि हम फीड कराएंगे, हम बच्चे को स्तनपान करेंगे तो हमारा जो शरीर है, शरीर की अवस्था है, बाहरी दिखावट जो है वो खराब होगी, पर ऐसा नहीं होता है। स्तनपान से बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध है जितना अच्छा और बढ़ता है, माँ उतनी और खुश रहती है और शरीर अपने में और खिल उठता है। तो उस पे कह लीजिए कि बाहर से देखने में और आप और खूबसूरत हो जाते हो, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। स्तनपान एक नवजात के लिए, एक माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज है
1: जी। तो आज की इस खास बातचीत से हमने जाना कि स्तनपान ना केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बेहद लाभकारी है। हम सब भी मिलकर स्तनपान को बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहन लोगन देखा कितना अच्छा जानकारी रहल है।

सब बहन लोगन के डॉक्टर जी के नसीहत जरूर सुनने के चाहिए, और सुनने के साथ साथ महतारी लोगन के एक अमल भी करे के जरूरत बा। तो आव देहल जाए डॉक्टर जी के धन्यवाद शारदा सिन्हा बहन के गावल एक कजरी के साथ।

भाई लोगन देखा मौसम के हिसाब से ना, जैसे खाए पिए का मन होला, पहने ओढ़े के मन होला, वही तरह से मनोरंजन के भी मन होला। अब देखा मन मन सायन तो हम लोगन बहुत सुनी ला जा, अभी बैठकी में एक और सुनल गई, मगर अब ही जौन हम लोगन शारदा सिन्हा बहन के गावल कजरी सुन ली जा, ऐसे लगत रहल ना कि जैसे आंख बंद कर और लगत बा कि जैसे झूला पर संगी सहेलिन के संगे ननद भौजाई के हंसी ठिठोली हो रहल बा। बहन लोगन देखा मनोरंजन भी तबे सोहेला जब शरीर और मन स्वस्थ होवे, और कहल जाला ना कि स्वस्थ शरीर में ही एक खुशहाल मन होवेला। तो शरीर के स्वस्थ रखे खातिर हम सबके अपन आहार विहार सही रखे के चाहिए, और हमार पर्याप्त और संतुलित आहार सुपाच्य होवे, एकरे खातिर मोटा अनाज हम अपने भोजन में जरूर शामिल करी। मौसम के देखते हुए हम सब अपन दैनिक कार्य से थोड़ा समय निकाल कर हित मित्र के साथ हरा भरा स्थान पर गरम गरम चाय और पकौड़ी नाही तक कम से कम लकड़ी पर सेकल मकई के भी आनंद लेवे के चाहिए। और देखा ऐसन कुछ है देर होए, घंटे भर होए, मगर वहाँ गुजारल ई घंटा अपने दोस्त मित्र के साथ समझा जीवन में एक नया ऊर्जा के संचार करेला। तो ए मौका के बिल्कुल हाथ से न गवावे, और अब समय भी हो गई ला बैठकी समेटे के, मौसम भी खराब बा। तो अगली बैठकी में फिर मुलाकात हुई, यही तरह के बातचीत हुई। तो चलत चलावत सब बहिन लोगन के राम राम।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से रिले भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचारों के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरा दिन आज प्रदेश का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 बजे अनुपूरक बजट पेश करने एक रिपोर्ट
1: हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है। इस अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए है, जबकि पूंजीगत व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विधानसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि श्रीराम मंदिर के चढ़ावा मामला में एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट में कौनो साधु संत को संलिप्तता न ही पावल गई हो। श्री योगी आज विधानसभा के बहरे मीडिया से बतियावत ये जानकारी देने हैं।
2: जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई, उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एपीआईएल थी उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया।
0: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भगवान बुद्ध का पहला उपदेश स्थल सारनाथ में धार्मिक स्तूप के सभी पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण कर रहे हैं। ये मौका पर मीडिया से बतियावत वहां के सारनाथ के भारत को 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित कर गए पर खुशी जतौनी।
3: निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्य का विषय हम सब के लिए है, वाराणसी के लोगों के लिए निश्चित रूप से, लेकिन देश भर के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारनाथ की यह पुरातात्विक महत्व की संपदा, ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है और ये भारत की 45वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है मॉन्यूमेंट है।
0: केंद्रीय मंत्री उम्मीद जतौने की सारनाथ के विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद वाराणसी के पर्यटन, संस्कृति, आवेजा के स्थानीय अर्थव्यवस्था के एक नया आयाम मिली। शासन आज राज्य के 13 गो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दियालस। इनमें 4 गो मंडलायुक्त शामिल हैं। तबादला सूची के मुताबिक इंद्र विक्रम सिंह के गोरखपुर को मंडलायुक्त बनावल गए बटे, उन्हीं वैभव श्रीवास्तव अब बस्ती को नया मंडलायुक्त हुई हैं। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो का खंडन कर रहे हो, जिसमें प्रधानमंत्री के पुराने सिक्कन के प्रदर्शन में भागीदारी बदे सरकार अधिकृत खरीदार को समर्थन करत दिखावल गई बा। पत्र सूचना कार्यालय को तथ्य जांच इकाई कह रहे हो कि इन वीडियो फर्जी बा, आए के डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनावल गई बा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण डाबर इंडिया के शहद, गाय का घी और खाए वाला तेल जैसन कई गो उत्पादन के 100% के दावा के साथ बेचे बदे प्रतिबंधित कर देने हो।
4: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे एफएसएस विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज व बिहने कहीं कहीं भारी बरखा कर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहे हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से राजस्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। संसद समीक्षा सुनेंगे आप रात्रि 10 बजे हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से विधानमंडल समीक्षा। कुछ गैर फिल्मी नगमों का आप लुफ्त लेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत रात्रि 8:30 पर। कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को लेकर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी बात का समय होगा रात्रि 10:30 का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। कार्यक्रम ग्राम जगत का समय होगा शाम 6:10 का।

शाम 6:50 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

0: सब पंचन के राम राम।
1: मुने भी है आपके भी राम राम।
0: तो हूँ के राम राम जीरा। और बताओ का हाल चाल है?
1: देखा हाल चाल तो इस समय मत पूछा कहे से कि जोन बरखा बुन्नी बा ना ओमे जोन की कैसे कैसे हमन के पंचायती में तो आवे के है ही है।
0: बिल्कुल।
1: और पंचायती में जब हम लोग के शामिल हो जाइला तो चाहे बरखा बुन्नी हो चाहे माने कल के कोनो भी मौसम हो तो ओमे हम लोगों का भेंट मुलाकात जब पंच भैया और बहन लोगन से होला तो ये होला कि सबसे पहले अपने पंच भैया और

0: सुरक्षित जल हम लोगन के पिए के चाहिए। आ देखल जाए तो कहल जाला सबसे सुरक्षित जल जवन बा उ वर्षा जल ही होला। अपने पंच भैया लोग अगर वर्षा जल का मने थोड़ा सा ओके शोधन कैले, शोधन कैले का तरीका ई बा के देखें अगर उबाल के पियत हो तो सबसे अच्छा बा, और नहीं उबाल पावत अपन पंच भैया लोगन तो फिटकिरी बा, फिटकिरी थोड़ा सा बाल्टी में रख कर वो पानी में थोड़ी फिटकिरी डाल दें, उसके बाद जौन भी उसमें माने धूल वाला कण रही मिट्टी रही अपने आप वो नीचे जम जाए, ऊपर का पानी स्वच्छ हो जाए, तो वो पानी का सेवन करें। कहे से कि देखें सुरक्षित अगर रहना वा बरसात के मौसम में तो तमाम ऐसा रोग बीमारी हम जौन की जल जनित हम जल से ही उत्पन्न होना, तो ऐसा स्थिति में थोड़ा सा हम लोगन के ध्यान देवे के परी कि हम लोग शुद्ध पानी का उपयोग करी। कहे से कि शुद्ध पानी का मतलब ये बा के देखें गांव घरे में जौन अपन अंचल बा हम लोगन हैंडपम्प का पानी पियत है, कुआं का पानी पियत है, लेकिन तमाम तरह का जौन जमीन से पानी आवता उनमें भी तमाम तरह का ऐसा तत्व माया जौन हम लोगन के शरीर के नुकसान पहुंचावता। तो ऐसे स्थिति में अगर वो पानी के शुद्ध करे के बाद तो देखें कोनो छोट मोटे फिल्टर रख लें, फिल्टर से भी हम लोग शुद्ध पानी का जौन बा सेवन कर सकीला, ओके पी सकीला, या तो ओके उबाल के पिए या तो उनमें फिटकिरी डाल का पिए। कहे से कि देखें जौन टाइफाइड बा खास तौर से या पेचिस बा या माने जौन भी डायरिया वगैरह होता तो ये सब पानी के वजह से ही होला।
1: बिल्कुल, अगर गंदा पानी इस्तेमाल हो तो निश्चित रूप से देखा बीमारी पकड़ी। और हम लोग यही कहला कि जैसे हमहन के जागरूक है वैसे पंच भैया और बहन लोग भी जागरूक है, लेकिन कुछ लोग सोचलन चला तो पानी हम पी ले ली।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पानी अगर साफ पियल जाए तो जोन कई तरह के कहल गल की जोन बीमारी हो रहा अपने शरीर के अंदर, जैसे की कहल गल की अपने शरीर के जोन की हाइड्रेज करेला पेट और किडनी और अन्य अंग के भी स्वस्थ रखे में देखा जो है कि अगर साफ पानी पियल जाए तो मदद करी अनाए तो ये बीमारी पकड़ी। और शुद्ध पानी ही हमारे शरीर के बीमारी से बचा सकेला और कल कल की प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत करे के बाद अगर देखा तो पानी का सुरक्षित बनावे का सबसे बढ़िया तरीका जो आप बतौले न की जिसे उबाले और उबाल के वो पानी के ठंडा करी, और ठंडा के लिए एक बार अगर चाहे तो कोनो पतला कपड़ा से छान के तब वो पानी की जोनों की पी।
0: बिल्कुल सही बात कहती है। देखें अभी हम लोगों ने अपने पंच भैया लोगों से बातचीत तो करवे करब, लेकिन आज जानकारी हम लोगों ने अपने पंच भाई लोगों बदे का लेकर आल भाई एकरे बारे में भी हम अपने पंच भैया लोगों के बता दे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के उपाय।
1: हाँ।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहब जो उनकी होम्योपैथिक चिकित्सक हुआ,
1: हाँ।
0: इनसे बातचीत बा सुनल जाये हम लोगन। आ एकरे साथे साथे खरीफ फसल में कीट रोग प्रबंधन डॉक्टर पीके सिंह साहब जो उनकी वैज्ञानिक,
1: हाँ।
0: के वी के सोनभद्र का हुआ तो इनसे भी हम लोगन बातचीत करब।
1: हाँ।
0: देखें ओकरे साथे साथे मन मनसायन भी हुई। पहले तो हम कहता है कि आज जौन जानकारी का चीज बा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे का,
1: हाँ,
0: उपाय,
1: हाँ।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहब से बिना देर कैले
1: सुन ले।
0: पंच भैया लोग देखें हम लोग अक्सर रोग बीमारी से जूझत रहिला, और ग्रामीण अंचल में बहुत ऐसा समस्या है जौने से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हम लोगन अक्सर परेशान रहेला। ये परेशानी के कैसे हम लोगन दूर करी और आपन रोग प्रतिरोधक क्षमता जौन है ओके कैसे बढ़ाई, आज हम लोगन के बीच में होम्योपैथिक चिकित्सालय से डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहब हम लोगन के बीच में आल हुआ, और आपसे ही हम लोगन आज जानब कि जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता है ओके कैसे हम लोगन बढ़ाए सकीला और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए का कैसे स्वस्थ रह सकीला। डॉक्टर साहब आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब जौन हम लोगन बात करीला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये रोग

0: प्रतिरोधक क्षमता ह का।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि अभी चर्चा हो रही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता,
0: जी
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता दो शब्दों से मिलकर बना है, रोग प्रतिरोधक यानी रोग से लड़ने की क्षमता। साधारण परिभाषा है एकदम, रोग से लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है।
0: अच्छा अच्छा, शरीर में अनेक तरह का बीमारियां माई, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर में विकसित होता तो उसे हम लोगों के लाभ का हो सकता।
1: बहुत से लाभ हैं, रोग से हम लड़ेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी होने से अच्छा है कि हम उसका पहले ही बचाव कर लें, हमें उनके कष्टों से नहीं गुजरना होगा।
0: अच्छा,
1: इसलिए हमेशा यह हितकारी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: अच्छा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगन अपने शरीर का बढ़ाई का कैसे स्वस्थ रह सकेला।
1: देखिए पंच भाइयों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक ही सूत्र है, स्वस्थ जीवन शैली।
0: अच्छा,
1: और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप आपकी बढ़ी हुई रहेगी, ज्यादा रहेगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के छह बढ़ाने के यानी स्वस्थ जीवन शैली के छह स्तंभ हैं जीवन में, जिसकी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे।
0: जी।
1: पहला है संतुलित आहार।
0: संतुलित
1: आहार हमें लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, जिसमें सब कुछ हो, हरी सब्जियां, फल, वसा, प्रोटीन, विटामिन, साबुत अनाज, दालें विभिन्न प्रकार की। अगर हम अपने जीवन में संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है शरीर को, उनको यदि मिलता रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा स्तंभ है भरपूर नींद। अगर हम अपने जीवन में भरपूर नींद लेंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे।
0: जी।
1: अब भरपूर नींद हमने कह दिया तो बहुत से लोग 12 बजे तक सोने लगेंगे। भरपूर नींद का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे तक सोना है, जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं जल्दी उठें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत काफी है, 10 से 12 घंटा भी सोएंगे तो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। ज्यादा
0: अच्छा।
1: भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है। तीसरा स्तंभ है तनाव मुक्त जीवन।
0: जी।
1: तनाव से मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, ये भी अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है।
0: जी।
1: चौथा स्तंभ है नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करेंगे, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, सारे अंग स्वस्थ रहेंगे, शरीर के विभिन्न भागों में जो गंदा खून जमा रहेगा ब्लड के सर्कुलेशन से, वो गंदा खून जो है साफ हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। पांचवा स्तंभ है नशा मुक्त रहें। नशा मुक्त रहें। अब हमारे पास मरीज आते हैं, उनको अगर हम कोई दवा लिखते हैं तो 50 बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन तंबाकू के पाउच पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है या खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग उसको 10-12 दिन भर में खा जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, ये आप लोग के रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है, इसलिए तंबाकू का सेवन ना करें। ये हो गया स्वस्थ जीवन शैली। अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ी रहेगी।
0: अच्छा, संतुलित आहार का बात बतौले आप डॉक्टर साहब, संतुलित आहार कैसे लें अपन जवन पंच भाई लोग हम।
1: देखिए सोनभद्र अपने आप में बहुत ही एक रिच जो है जिला है।
0: जी।
1: यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सब्जियां जो कि औषधीय गुण रखती हैं उत्पन्न होती हैं। तो संतुलित आहार का मतलब जैसे हरी सब्जियां यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आप हरी सब्जियां एक ले लें। दालें, जैसे यहाँ पे एक सतमिजरा दाल लोग खाते हैं बड़े चाव से, विभिन्न प्रकार की दालों को मिला के दाल बनाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, क्योंकि जो लोग शाकाहार लेते हैं एक दाल से हमें सारे प्रोटीन नहीं मिल सकते।
0: जी जी।
1: मांसाहारी में तो अंडे और मांस खाने से सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सिर्फ एक दाल में नहीं मिलते। अगर हम सात मिजरा या विभिन्न प्रकार के दालों को मिला के दाल बनाएंगे, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स होगा, जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड पाए जाएंगे। फिर कुछ फैट, अब फैट में ज्यादातर रिकमेंड हम लोग करते हैं कि गाय का अगर घी आप खाएं और कम संचित वसा जो रहे, नॉन अनसैचुरेटेड फैट्स रहे, वो खाएं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में संतुलित रहे, वो भी बहुत ज्यादा ना चावल खाना है ना रोटी, एक नियमित रहे। दूध उसको शामिल करें, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडा और मांस मछली को भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ फल खाएं।
0: अच्छा।
1: एक चीज मैंने ये देखा है कोरोना के काल में, अगर हम विटामिन सी वाले फल लें, जैसे कि सोनभद्र के क्षेत्र में नींबू वगैरह बहुत होता है, तो अगर उसका नियमित सेवन करें, जैसे संतरा हुआ, कीनू हुआ, और विभिन्न जो रसदार खट्टे फल हैं, अगर उसका हम नियमित सेवन करें तो हमें बीमारियां कम होंगी।
0: अच्छा
1: हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रदान करते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है।
0: अच्छा माने खट्टा फल जौन हो वो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावा ना। अच्छा डॉक्टर साहब आप होम्योपैथिक चिकित्सक हो तो होम्योपैथी चिकित्सा में भी कोनो ऐसा दवाई है जौन हम लोगन के

0: रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाऊं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं इस पे चर्चा करना ही चाहता था।
0: जी
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के दो उपाय हैं,
0: जी
1: दो तरीके से बढ़ाया जाता है, एक सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक विशिष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता।
0: जी जी
1: हम पहले दोनों को समझ लें।
0: जी
1: सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का रोग हमें ना हो, इन जनरल हम ऐसी चीजों का सेवन करें, ऐसे उपाय करें। दूसरा विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टाइप के रोग के लिए हम जो है कुछ पदार्थों का, कुछ औषधि का सेवन करें जिससे कि हमें वो विशिष्ट प्रकार का रोग न हो। जैसे वैक्सीनेशन भी एक विशिष्ट प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का दवा है, एक तरह के वो एक तरह का तरीका है वो। अगर हम कोरोना का वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कोरोना जैसी बीमारियां नहीं
0: नहीं
1: होंगी।
0: होंगे।
1: उसी प्रकार जब ये कोरोना फैला था तो हम लोगों ने आर्सेनिक अल्ब नाम की एक दवाइयां लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत ज्यादा लोगों को दिया हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से सेवन किया और वो इन जनरल रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता है, वो
0: अच्छा।
1: श्वसन संबंधी रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़ाता है। इस तरह की चीजों लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि लोग बस यह सोच के कि आर्सेनिक एल्बम ले लो कोई भी रोग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ सर्दी जुकाम जैसी या फ्लू जैसी बीमारियां नहीं होंगी, उसकी सेंसिटिविटी घट जाएगी उसके प्रति लोगों की, इसलिए आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है। और उसको लेने का तरीका यह है कि 15 दिन में सिर्फ 3 डोज लेना है,
0: अच्छा।
1: उसके बाद फिर 15 दिन इंतजार करना है, फिर 15 दिन बाद रिपीट करना है, तब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ये सर्दी जुकाम या फ्लू जैसी बीमारियां हैं उसके प्रति बढ़ेंगी। फिर
0: अच्छा।
1: कुछ चीजें और बता दें हम आपको, जैसे कॉमन चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फरवरी या जब संक्रांति का काल रहता है, जिस समय गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी में मौसम बदलता है, जब तो छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स का बहुत प्रकोप रहता है, उनको बहुत तेजी से होने लगता है। उस समय वैरियोलिनम करके एक दवाई आती है होम्योपैथी में, अगर उसकी 3 डोज हर महीने लिया जाए तो चिकन पॉक्स होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है, करीब 90% तक कम हो जाती है।
0: अच्छा।
1: जी
0: तो ए तरह से अपन जवन पंचभिया लोग हवा अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकना। अच्छा जवन चूंकि अपन जवन अंचल बा डॉक्टर साहब, ई आदिवासी अंचल है, पहाड़ी अंचल है, और यहाँ लोगन का जागरूकता होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति बहुत कम बा, एलोपैथी चिकित्सा के प्रति बहुत अधिक बा, तो कैसे वो होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति थोड़ा जागरूक हो सकना।
1: देखिए पंचभाइयों, बहुत अच्छा यह प्रश्न है। होम्योपैथी चिकित्सा विधि ऐसी है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या न के बराबर है, क्योंकि यह केमिकल रहित होता है। अगर इसकी औषधियों का केमिकल लैब टेस्टिंग किया जाए तो इसमें अल्कोहल के सिवा और कोई तत्व नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हमारी दवाइयां एनर्जी लेवल पे होती हैं। इसके हमारी दवाइयों को पोटेंटाइज किया जाता है, यो कह लें कि जैसे मथनी से मथ के मक्खन निकलता है, वैसे हम लोग केमिकलों को मथ के उनको पोटेंटाइज करके उनके सत्व को उस दवाइयों में खाली भेजते हैं, तो इसलिए उसके नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं और बीमारियों का निदान बड़े ही आसानी से हो जाता है और खाने में आसानी होती है। मैं करीब 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने यह देखा है कि छोटे बच्चे होम्योपैथिक दवाइयां बड़े मन से खाते हैं, क्योंकि वो कड़वी भी नहीं होती है और वो मांग मांग के खाते हैं। जब
0: बिल्कुल
1: अगर मैं उनको एक ड्रम दवाई दे दिया, बोल दिया 4-4 गोली दिन में 3 बार खाना है, तो सोचेंगे कि हमें 5-6 बार मिल जाए, इतना प्रसन्नता से खाते हैं। और वहीं अगर अंग्रेजी दवाइयां उनको दिया जाए तो इतनी कड़वी होती है कि बच्चे उल्टी तक कर देते हैं, यानी पहले से ही बीमार हैं और उनको प्रताड़ना। तो होम्योपैथिक दवाइयां बड़ी ही सरल, सुगम और अब तो आसानी से उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने हर गांव गांव में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और आयुष चिकित्सालय खोलने का प्रावधान रखा है। आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी ने 250 आयुष चिकित्सालय खोलने का पूरे उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है, जो जल्द ही क्रियान्वित होगा।
0: बिल्कुल। और सब अपन जौन ग्रामीण भाई लोग हों, पंचभिया लोग हों, होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़ी हैं, जागरूकता उनकर बढ़ी, चलत चलावत अपने पंचभिया लोगन के आप का सहे जल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए।
1: हम दो बातें कहना चाहेंगे, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने की एक चीज और जो मैं भूल गया बताना, वो मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि धूप लें। विटामिन डी अगर आपके शरीर में मेंटेन है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।
0: जी।
1: और आखिरी में मैं यह कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, स्माइल, प्रसन्नता, प्रसन्न रहें, ये एक प्रकार का संक्रामक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके आसपास रहने वाले लोग भी प्रसन्न रहेंगे और सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, प्रसन्न रहें, मस्त रहें,
0: बिल्कुल
1: रहें।
0: सही बात आप कहें, अगर हम लोगन खुलकर हंसब, प्रसन्न रहब, तो निश्चित बाकी हम लोगन का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। डॉक्टर साहब आज आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया जौन अपने पंचभिया लोगन के जानकारी दिलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद पंच भाई।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जीरा
2: हाँ
1: देखें, ये डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता भैया रहना। हाँ, इनसे हम लोग जानकारी ले ली कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के उपाय का बा। इनके देही जा बहुत बहुत धन्यवाद। झूरे झूर न रहे राजमणी और उनकर संघाती लोगों ने कजरी सुनावत हुआ तो सुन लो।
2: चला सुन लो।

0: जीरा दिखाई रना। हाँ, राजमणी और उनकर संघाती लोगान। कितना बढ़िया कजरी सुनौले। जब कजरी सुनौले सावन का महीना बा, बरसात होता छिटफुट, तो ऐसा स्थिति में हम लोगन के जौन मौसम वैज्ञानिक वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का,
1: अच्छा,
0: शिव मंगल सिंह साहब, उनसे जरूर जानकारी लेवे के चाहिए, तो मौसम का जानकारी।

0: ले लेंगे जा।
1: चलो
2: पंच भैया लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और जब हम लोगन खेती बाड़ी करत है तो खेती बाड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका अपन मौसम निभावला और आज हमार संपर्क हो गल बा शिवमंगल सिंह तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। और आज हम लोगन आपसे ही जानब कि अगले चार दिन मौसम अपन जौन बा कैसन रही, चूंकि आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार और शुक्रवार के हम लोगन के मौसम का जानकारी मिलल है शिवमंगल सिंह साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों नमस्कार। जैसन कि आप लोग किसान भाई देखत हुई कि पिछले दो तीन दिन से कहीं न कहीं हल्की फुल्की और कहीं कहीं जो है हल्की से थोड़ा ज्यादा अधिक बारिश होत बा और ऐसे ही अनुमान आओ वाले अगले दो तीन दिन तक भी बा, चार दिन तक बा कि कुछ जगह पे जो हो अच्छी बरसात हुई, कुछ जगह पे जो हो सामान्य से बरसात हुई जी। और ऐसे में जो हो तापमान के बात करल जाए तो 23 से 24 डिग्री रही न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बात करल जाए तो 29 से लेके 32 डिग्री के आसपास रहे का अनुमान बा भैया।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पानी नहीं बरसत तो जो ना खास तौर से धान का अपन फसल बा वो कितना प्रभावित हुई?
3: देखे किसान भाई ऐसा कि धान ऐसा फसल हो जोन की पूरी तरह से पानी पे ही निर्भर होला, खासतौर से बरसात के पानी पे। अगर बरसात के पानी सही से न मिली तो सीधे तौर से जोन होला कि धान का उत्पादन घटी।
2: जी जी
3: ठीक हो। तो इस समय का हो कि अभी तक दिखावत हो कि जो मौसम विभाग के जानकारी आयल बा
2: जी जी
3: आजू के उमन ये बतावत गल बा कि अगले दो तीन चार दिन तक जोन हो अच्छी बारिश का अनुमान बा। अपने अंचल की बात करल जाए तो सोनभद्र और आसपास के जिलन में
2: जी जी जी
3: अगर ऐसा स्थिति बनता भैया तो किसान भाई जोन होला कि प्रारंभिक जोन खरपतवार नियंत्रण के उपाय होला ना, जैसे
2: जी
3: कि
2: जी
3: लोग थोड़ा सा पानी हो जाला तो सोच लेंगे कि खरपतवार बदे दवाई छिड़क दिया जाए तो ऐसा स्थिति बने तो भाई ओकर काम कर ली हन
2: जी।
3: और जोन हो ऐसने में कहो कि हवा की गति भी थोड़ा सामान्य से अधिक रही भैया
2: जी, तो
3: जब सामान्य से अधिक हवा की गति रही तो ऐसने में यूरिया का या फिर अन्य उर्वरक का छिड़काव न करे तो ज्यादा बढ़िया बा
2: जी जी।
3: ठीक है। और साथ साथ अगर मक्का अरहर मूंग और तिल जैसन ये सब फसल के बाद करल जाए तो ये समय जो है भैया ये सब फसल जो है प्रारंभिक अवस्था की स्थिति में बा, तो ऐसने में जो होला कि भाई ये फसल के निकाई गुड़ाई समय से कर लेवल जाए और जो है कीटनाशी खरपतवार नाशी का छिड़काव जब मौसम साफ रहे तब करके ओके बचा लेवल जाए। और बात करल जाए भैया जैसे कि जो सब्जी वाली फसल बा जैसे लौकी भिंडी ये समय जो तैयार बा फसल
2: जी जी
3: तो ओके समय से तोड़त रहे हैं, कैसे कि भाई अगर समय से फल न टूटी तो जोन आवा वाला फल बा फूल बा वो प्रक्रिया होने में थोड़ा सा विलम्ब हुई तो उससे जो हो आपको उत्पादन कहीं ना कहीं घटी।
2: बिल्कुल
3: ठीक है भैया। और जैसे कि अगर पशुपालन के बात करल जाए साथ साथ भाई पशुअन के देखे भैया सूखा स्थान पे रखे तो ज्यादा बढ़िया बा और जोन चारा वारा खियावे ना ओमन जोन भूसा खियावे उमन देख लेंगे कैसे कि बरसात के मौसम बाद सीलर उमन लगल रही तो भाई कहीं ना कहीं कोनो रोग व्याधि हो जाए तो फिर किसान के ही दिक्कत हुई। और अगर कोनो ऐसा समस्या समझ में आवे कि भाई बुखार भूख कम लगता पशु के तो तुरंत जोन हो पशु चिकित्सक से सलाह लेके भाई नियमित जोन हो दवाई करें तो अपने पशुओं के भी सुरक्षित रख सकते भैया।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगों के मिलल ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखें जीरा अगर मौसम का जानकारी हो गई तो मौसम के जानकारी के साथ साथ हम लोगन के बाजार भाव भी जरूर जान लेवे के चाहिए कि आज का रावर्ट्सगंज सब्जी मंडी का जोन बाजार भाव बा बाबूलाल मौर्या का पाती बा हम लोगन के हाथ में, तो देखें सब्जी मंडी का बाजार भाव कुंतल में बा आलू लाल 1000 से 1100, आलू सफेद 900 से 1000, टमाटर 2000 से 2200, लौकी 1500 से 1800, नेनुआ 2000 से 2200, भिंडी 1000 से 1200, पालक जौन बा 1200 से 1400, बोड़ा 2500 से 2800, कुनुरु जौन बा 2000 से 2200, अदरक जौन बा 15000 से 16000 रुपया कुंतल बा, धनिया जौन बा वो 8000 से 10000 रुपया कुंतल बा, हरी धनिया

0: हरा मिर्च जौन बा वो देख रहे हैं 5,055 कुंटल बा। मूली जौन बा वो 2,000 से 2,200 रुपया यानी 2,200 रुपया कुंटल। नींबू 200 से 250 रुपया सैकड़ा बा। अब फूल गोभी जौन बा वो 2,500 से 3,000 रुपया सैकड़ा बा। केला जौन सब्जी वाला बा वो 1,800 से 2,000 बा। बैगन लंबा 1,200 से 1,400 और बैगन गोल जौन बा वो 2,500 से 2,800 रुपया कुंटल बा। ये देखें आज का बाजार भाव रहल है। अब बिना देर कैले हम लोगन जौन खरीफ फसलन में कीट रोग प्रबंधन बा डॉक्टर पीके सिंह साहब से जानकारी सुन ले।
1: चलो
2: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और ए समय खरीफ का सीजन चलत है। खरीफ में हम लोगन का प्रमुख फसल जौन है वो धान है। धान में भी रोग कीट का प्रकोप बहुत अधिक होला। आज हम लोग जानल जाई। आज हमारे संपर्क हो गल बा कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह साहब से जौन की कीट रोग विशेषज्ञ हम। और आपसे ही आज हम लोगन जानब कि कैसे धान के फसल के हम लोग बचाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब धान के फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन कीट और रोग लगाला?
3: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। वर्तमान में खरीफ की फसल में मुख्य रूप से जो है धान की फसल लगी है
2: जी।
3: और किसान भाइयों को सबसे ज्यादा धान की फसल में रोग और कीट के प्रकोप से ही ज्यादा उनकी दिक्कतें शुरू होती है
2: जी। जी
3: वस्तुतः इसमें सामान्यता जिस समय जहाँ बारिश इस समय कम हो रही है या हल्की बारिश होकर के धूप निकल रही है जहाँ पे नमी का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है जहाँ रिलेटिविटी आर्द्रता बढ़ रही है
2: जी,
3: ऐसी परिस्थिति में रोग और कीट के प्रकोप इस धान की फसल पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस धान की फसल में किसी प्रजाति के माध्यम से किसी रोग और कीट के प्रकोप कम पड़ेंगे ऐसा संभव नहीं होता है। लगभग सभी प्रजातियों में सामान्यता मुख्य जितने भी रोग और कीट होते हैं वो लगते ही रहते हैं क्योंकि जब सामान्य रूप से बारिश नहीं होती है अगर होती है रुक रुक करके होती है आर्द्रता बढ़ने शुरू हो जाती है तो उस समय परिस्थितियां किसानों के लिए प्रतिकूल होना शुरू हो जाती है। धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीट लगते हैं और सबसे ज्यादा रोग लगते हैं और दोनों के लिए लक्षण जो होते हैं एक समान होते हैं जिसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि रोग से संबंधित है या कीट से संबंधित है। वर्तमान में इस समय साकाण झुलसा और दूसरा एक धारीदार साकाण झुलसा का प्रकोप सबसे ज्यादा है क्योंकि बारिश जो है एक समान स्तर पर नहीं हो रही रुक रुक करके ठहर ठहर करके धूप लेकर के हो रही है जिसकी वजह से नमी बढ़ रही है और क्योंकि किसान भाइयों ने लाइन में उसको नहीं लगाया इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत का प्रकोप रोग और कीट का सबसे ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है।
2: जी जी
3: इस समय साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा का सबसे ज्यादा प्रकोप हो रहा है। ये दोनों रोग जो होते हैं नर्सरी से शुरू होते हैं।
2: जी, जी।
3: नर्सरी का रोग होता है अगर नर्सरी से अगर वहीं से आप फहराव कर ले खासतौर से अगर आपने बैठोली करने बेहन डालने के पहले यानी पौधशाला तैयार करने के पहले अगर आपने बीज शोधन किया होता है तो ये नर्सरी में रोग नहीं पनप पाता। लेकिन जब आपने बीज का शोधन नहीं किया है तो दिक्कतें आना शुरू होती हैं और इस समय साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा का सबसे ज्यादा प्रकोप हो रहा है क्योंकि इसके बाद फिर सीड ब्लाइट का प्रकोप शुरू होगा। लेकिन इस समय धारीदार साकाण झुलसा का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। इन दोनों रोगों में आपको थोड़ा सा समझना है। साकाण झुलसा में पत्तियां आगे से नोक पे पीली होना शुरू होती है और फिर सामान्यता पत्तियों के ऊपरी वाले तल पर पीले तन को बढ़ना शुरू होती है जो बाद में भूरा पन नहीं लेता। लेकिन धारीदार साकाण झुलसा में नोक से शुरू होता है पत्ती की निचली सतह पर इस रोग का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। दोनों रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा कारगर होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप ले चुके इस समय गर्मी ज्यादा बढ़ रही ज्यादा इसकी मात्रा ना बढ़ाएं और एक दवा आती है सेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का पाउच आता है 15 ग्राम पर हेक्टेयर सेप्टोसाइक्लिन है 6 ग्राम के पाउच में एक पाउच में आता है 2 पैकेट आप ले लें 12 ग्राम और 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। दोनों का स्प्रे आपको कराना है। ये दोनों परिस्थितियों में दवा कारगर होती है जहाँ पे साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा दोनों लगता है।
2: जी जी
3: फर्क इतना आपको रखना है कि इस दवा के प्रयोग करने के लिए प्रमुख रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि

0: हवा में बैक्टीरिया है
1: जी,
0: और बैक्टीरिया अगर धूप से आप कड़ी धूप में इसका स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो तत्काल इस दवा का बैक्टीरिया तुरंत मर जाएगा। इसलिए प्रयास आपको ये करना है कि भोर सवेरे इसका छिड़काव 5-6 बजे शुरू कर दे, 10 बजे तक समाप्त कर दे, और बाद में या तो 3 बजे के बाद शाम को करें जब धूप कमजोर पड़ जाए। अगर बादल है, बादली मौसम है, तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 घंटे तक इस दवा के छिड़काव के बाद 8 घंटे तक किसी भी प्रकार का कोई पानी ना बरसने पाए। बस यही ध्यान रखना है, इस दवा में बैक्टीरिया है। धूप तेज धूप में अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो इस दवा का
1: प्रभाव
0: जो मिलना चाहिए वो प्रभाव जो है वो आपको नहीं मिलने पाएगा।
1: जी जी जी,
0: ये प्रमुख रूप से इस समय 2 रोग लगेंगे। दूसरा, अब इसमें आपका धान में जो कीट लगना शुरू हुए, अभी हरा फुटका आएगा, भूरा फुटका आएगा।
1: जी जी,
0: अभी सामान्यता कीट के प्रकोप ज्यादा नहीं देखे गए, इसमें आपको ग्रास खापर का भी प्रकोप दिख रहा होगा। यही 2-3 का प्रकोप अभी इस समय अगस्त माह में आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तैसे तैसे राइस पर का प्रकोप होगा, फिर तना भेदक आएगा, इससे बोरा का बोल, लेकिन वो आगे की परिस्थितियां हैं। लेकिन वर्तमान में अगस्त के महीने में आपको ध्यान रखना है, ग्रास हॉपर है, आपका हरा भूरा फुटका है, इन तीनों के प्रयोग के लिए आप सामान्यता जो कीटनाशक रसायनों का लोग प्रयोग करते हैं, जिससे पहले करते थे कुनाल फास का करता है, जो अब वर्तमान में बैन हो गया है, लेकिन इन तीनों कीट के प्रकोप के लिए बजाय आप किसी दवा के छिड़काव का अगर प्रयोग करते हैं तो उसको रोक दीजिए। उसके स्थान पर आप डस्टिंग का प्रयोग कीजिए, मिथाइल पैराथियन है या कार्बोरेल है, 5% की डस्टिंग आती है, उसका प्रयोग आप करें। 15-20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुरकाव आप कराएं, तो आपके जो हरे हरे फुटके और भूरे भूरे फुटके और ग्रास आपर जो टिड्डे आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके प्रकोप से बिल्कुल सीमितता आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कथा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, आगे देखे में आवला की तना छेदक वगैरह का भी प्रकोप होला,
0: आगे जो प्रकोप आएगा तना छेदक का प्रकोप आएगा, सीट ब्लाइट का भी रोग आएगा, उसमें मेन रूप से आएगा तना छेदक का।
1: जी जी,
0: जब आपकी बालियों का प्रकोप शुरू होगा तब सबसे ज्यादा तना छेदक आपको आतंकित करेगा, आपकी बालियां काटेगा। उस परिस्थितियों में आप किसी भी ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड को, ग्रेनुलर मतलब जो दानेदार दवाइयां, जिससे पहले क्लोराडान आता था, फोरेट आता था, एल्डिकार्ब आता था, वर्तमान में अभी भी क्लोराडान हालांकि बैन करा है, लेकिन अभी भी मार्केट में मिल रहा है।
1: जी जी,
0: अगर वो नहीं मिल रहा तो उसके स्थान पर फोरेट 10G का 15-20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका बुरकाव कराएं, सीधे उसका प्रभाव आपका नियंत्रण में आ जाएगा।
1: जी, तो उसे रोग या कीट का प्रभाव कम हो सकला। अच्छा, और जौन अपन किसान भाई लोग धान का खेती कैले बा ए समय, खास तौर से कौन प्रमुख प्रमुख चीज ऐसा माई जौने बात का ध्यान अपन किसान भाई लोग रखें?
0: इस समय सामान्यता आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए लाइन से लाइन, पंक्ति से पंक्ति अगर बुआई की गई होती तो इस तरह के रोग और कीट से आप सुरक्षित रहते
1: जी।
0: लेकिन चूंकि किसान जो है छुटकुआ बुआई करते हैं, तो इस समय सबसे ज्यादा जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ेगी घनत्व बढ़ेगा, पौधों का घनत्व बढ़ेगा, रोग और कीट के प्रकोप बढ़ेंगे। लेकिन इस समय जब तक पानी अपनी रफ्तार से नहीं बरस रहा है, आपको लगातार मॉनिटरिंग अपने खेत की करती रहनी पड़ेगी। जो हमने आपको साकार झुलसा और धारी घास साकार झुलसा बताया, ये इसका प्रकोप लगातार बढ़ता चला जाएगा। सावधानी आपको ये रखनी है, एक बार छिड़काव करने के बाद हर 10 दिन के अंतराल पर अगर बारिश सीमित औसत मात्रा में अगर बारिश नहीं हुई है, तो हर 10-10 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे आपको करवाना पड़ेगा, अन्यथा इसका प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा पौधा इससे असुरक्षित हो जाएगा और सब लोगों अन्य अगल बगल के फसलों पर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, प्रयास ये करें, कोई भी कीट का अगर कोई प्रकोप होता है तो आप डस्टिंग को, डस्टिंग जो होती है कार्बोनिल की है या मिथाइल पैराथियन की है, मैलाथियन, उसमें इस बात का ध्यान रखना है, इसका रेजिडुअल इसका प्रभाव जो है 28 दिन तक होता है।
1: जी,
0: और किसान भाई जिन दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो लिक्विड की मात्रा में होता है, उनका अधिकतम प्रभाव 7-10 दिन से ज्यादा नहीं होता। इसलिए प्रयास करें कि कम लागत पर जिस दवा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा सकता है उसी दवा का प्रयोग करें, और मुख्य रूप से आप डस्टिंग का प्रयोग करें। किसी भी कीट के नियंत्रण के लिए, चाहे माहू आपका लगे आकर के, चाहे आपका तना छेदक का प्रयोग आए, चाहे आपको अन्य कीट जितने भी लगेंगे, जिसको राइस हिस्पा लगेगा, अभी क्लोरोफिल गायब होना शुरू होगा, अगर डस्टिंग आपकी पहले से पूर्वक में की रहेगी तो 28 दिन तक

0: मारक क्षमता या इसका प्रभाव संबंधित फसल पर बना रहता है और किसान कम लागत के अपने फसल की सुरक्षा आसानी से करने के लिए सक्षम रहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कहते हो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया सलाह आप दे लेने अपने किसान भाई लोगों के।
2: जीरा देखा इरना डॉक्टर पी के सिंह साहब, खरीफ फसलन में कीट रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी हम लोगन के मिलत रहल है। आज जानकारी का सही उपयोग हम लोगन के जरूर करे के चाहिए अपने खेती किसानी में। देखें एक बात और अपने पंच भैया लोगन से हम कह कि भैया हो जौन पौधा रोपण आप लोगन अपने यहाँ करत आया, नया नया पेड़ पालो लगावत आया, तो ओकर संरक्षण बहुत जरूरी बा। या बिना संरक्षण के वो पौधा समाप्त हो जाई तो कौनो लगौले का फायदा न हुई। ओकर पालन पोषण कयल आप लोगन बदे बहुत जरूरी बा, तो ओकर पालन पोषण भी जरूर करें। देखें अब धीरे धीरे जवन आज का अपन कार्यक्रम बा ओकर समय हो चलल है। अब हम लोगन अपने पंच भैया लोगन से विदा लेब, लेकिन कल एक नई जानकारी के साथ जरूर अपने पंच भैया लोगन से हम लोगन जुड़ब और कुछ हम लोगन बात करब, कुछ अपन पंच भैया लोगन के जानकारी सुनवाई भी और साथे साथे मन मनसायन भी होई। तो अब हम कथी कि अपन जौन बा बुरिया बिस्तर हम लोगन थोड़ा मोड़ी समेटी चले के प्रयास करी, तो चले के तो सब पंचन के राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संक्रामक बीमारी चपेट में आ जाती है ना, यही के लिए हम सबका समय पे टीकाकरण करवा ली।
1: काहे तरह जब पहले तरह हम पंचे टीकाकरण कराए लेबे तो जो इस समय बहुत तरह की बीमारी आती, खुरपका, मुंहपका और यहाँ तक कहते हैं कि जो बांझपन है वह नहीं होते।
0: ओम भी कहा मतलब कि टीकाकरण से पशु के शरीर में जो रोग से लड़े क्षमता होता ना वो विकसित हो जाए।
1: तो अपन जो नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय है हुमा जाए के अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए सकत हो।
0: और ओम भैया टीकाकरण के बात करो ना, तो टीकाकरण जो है

0: सरकार द्वारा एकदम निशुल्क लगावा जाए।
1: हाँ, तो ये चीजन का बड़ी आसानी थे अपनाए कहिया भैया अपने हरहा गुरुन किया अपनी खेती किया और अपने आप यहाँ जो उन जेब पर खर्चा पड़े वाला है वही थे सुरक्षित भैया कर सकत हो।
0: तो इन चीज का हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अपन पशु का टीकाकरण जरूर करवा ले, गंभीर रोग से बचावे का है। और अगर गंभीर रोग से बची हैं भैया अपन हरा गुरु अपने साथ रही हैं, तो अपन खेती बहुत बेहतर तरीके से हो सके।
1: हाँ, और सरला बहनी देखो, जब हम बंजन का आज की खबर पता चल जाते तो कितना नीक हो जाते।
0: कायन भैया, अगर पहले से खबर पता चल जाता ना, तो वही के अनुसार हम सब चला थन।
1: तो सरला बहनी, आज की खबर जाना जाए।
0: बिल्कुल जाना जा भैया।
2: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रीकरण को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 3,300 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन मांगे गए थे। जिन जिलों में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां किसानों का चयन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा और अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक मशीनों का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मशीनों के उपयोग से खेती में समय की बचत होती है, श्रम लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
1: सरला बहनी
0: हाँ भैया,
1: देखो, ये बेहरा तना तना की हरी हरी सब्जी जैसे देखो बाजार में यहाँ भैया दिखा रहे हैं, अपने ख्यातों बाद में बहुत हैं।
0: कायन भैया देखो, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के फल जब अपने खेत में दिखात है। और तमाम तरह की सब्जी है, इस समय लौकी है, कद्दू है, तुरई है, और जब हरी सब्जी अपने थाली में आवत है ना, तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन सरला बहनी है का देखो, ये बेहरा जोन अपन ख्यात में सब्जी है वह देखन तो बड़ी नीक लागत है, खाए बड़ी नीक लागत है, लेकिन जोन हम पंचे वही का तैयार करी थन तो वही में बहुत तना के जो है कीट पतंगा रोग दोग बहुत लागत है।
0: ओम भैया, यही के लिए हम सबका पहले से सचेत रहने की जरूरत है, अपने खेत की निगरानी करने की जरूरत है, ताकि अपने जो फसल हैं और सब्जी हैं उनका हम कीट से बचा सकें।
1: हाँ, तो आज अपने साथ देखो रिंकी कुमारी चौहान बहनी जुड़ चुकी हैं और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बता रही, तो आओ जाना जाए।
0: जाना जाए भैया, और अपन पंच भैया भी जाने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे हानिकारक कीट बीमारियाँ लगती हैं, उनका प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक पौध रक्षा डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय खरीफ की ढेर सारी सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, कंद वर्गीय सब्जियां हैं और टमाटर, मिर्च और बैंगन भी है, तो इनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो कैसे?
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, अभी देखिए खरीफ का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हैं, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कीट रोग है उसका भी प्रमाण बहुत है। रस चूसक कीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, जैसे एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इन सभी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाइयों से हमें इसका प्रबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से कीट में जो है प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसी वजह से जब हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो एक दो साल के बाद वो रसायन जो है उस कीट के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेम केमिकल इस्तेमाल होने से प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित हो जाती है हानिकारक कीटों में। इसीलिए और इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कीट है, जैसे कि हम देखेंगे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, तो इस तरह के जो मित्र कीट है उसका भी नुकसान होता है, वो भी हमारे खेत में से खत्म होते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें व्यवहारिक नियंत्रण हो गया, यांत्रिक नियंत्रण हो गया, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है या जो आर्थिक हानि स्तर से अगर कीट का जो स्तर है वो अगर ऊपर है, नहीं प्रबंधन हो रहा है, तभी और तभी हमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
3: और वो भी सुरक्षित?
4: वो भी सुरक्षित, जितना हम जानते हैं कि CIBRC है या फिर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है कि इतनी ये दवा इतनी मात्रा में ही और इतने पानी में इतना जो रसायन है वो

0: मिलाकर जो घोल बनाकर वो स्प्रे करना चाहिए उतनी ही मात्रा में। कभी भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इस समय ढेर सारी सब्जियों की नर्सरी है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, खरी प्याज है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो नर्सरी में कीट रोग का प्रबंधन कैसे हो?
0: देखिए, नर्सरी की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि अगर नर्सरी की ही अवस्था से हम लोग रोग या कीट का प्रबंधन कर लेंगे तो आगे जाके हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कीट और रोग हैं वो कम लगेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नर्सरी जो है जिसमें आद्र गलन रोग लगता है तो उससे, और जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छे से पानी का जो निकाल है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना चाहिए हमेशा नर्सरी के लिए। उसके बाद जो सौरीकरण, वो भी भूमि का बहुत ज्यादा जरूरी है। यह हमें सौरीकरण जो मई जून के महीने में जब तेज धूप होती है तब करना चाहिए। उस समय हमें जो पॉलिथीन सीट होती है 45 गेज की, उसे मिट्टी के ऊपर करके फिर सौरीकरण किया जाता है, जिससे कि ज्यादा गर्मी की वजह से जो भूमि के नीचे कीट हैं या रोगवाहक जो स्पोर हैं, अंडे हैं, वो सब मर जाते हैं इस वजह से। उसके बाद हमें भूमि शोधन भी करना चाहिए। भूमि शोधन हो गया कि जो 3 किलोग्राम जो घूरे की खाद होती है हम जानते हैं, उसके अंदर 250 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा जो हमारी जैविक मित्र फफूंद है उसे मिलाकर थोड़े दिन तक रख देना चाहिए छाए में, और उसके अंदर पानी छिड़क कर अगर हम नमी बनाए रखते हैं फिर 21 दिनों के पश्चात हमें अपनी क्यारी में 3 वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए।
1: ये कितने क्षेत्रफल के लिए?
0: ये सिर्फ 3 वर्ग मीटर के लिए, 3 वर्ग मीटर की जो क्यारी होती है सिर्फ इसकी मात्रा है
1: उसमें 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, तीन
0: ट्राइकोडर्मा
1: किलो गोबर
0: घूरे
1: की
0: की,
1: सड़ी खाद या कंपोस्ट में।
0: हाँ, उसमें मिलाकर रख देना चाहिए। उसके बाद जो नमी बनाए रखना, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कि नमी रहे। उसके बाद ये जो मित्र फफूंद है वो इसमें बढ़ जाती है, फिर उसे हम जो हमारी क्यारी है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीज शोधन, अगर बीज शोधन ही हम कर दे तो वो जो आगे हमारी मुख्य फसल है उसमें रोग बहुत ही स्तर से कम हो जाता है। तो जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी 4 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज शोधन हमें जरूर करना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे हम प्रतिरोधी क्षमता, किसी भी अगर बैंगन की प्रतिरोधी क्षमता की प्रजाति है या फिर टमाटर की जो प्रजाति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है कीट और रोग के लिए, तो वैसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रस चूसक कीट है उनके लिए भी बीज शोधन होता है, तो उसके लिए भी हमें इमिडाक्लोप्रिड 70 WS का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना चाहिए।
1: यानी नर्सरी में ये काम
0: हाँ
1: पहले ही हो जाए
0: हाँ पहले ही हो
1: बीज
0: जाना
1: शोधन
0: चाहिए।
1: में। डॉक्टर साहब, जहाँ रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन नर्सरी की, तो पौध जड़ उपचार भी तो जरूरी है।
0: हाँ, पौध जड़ उपचार भी हमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से कर देना चाहिए 5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से। उसके बाद देखिए, हमें जब हम मुख्य फसल लगा दे रहे हैं तो साथ ही साथ जो परभक्षी पंछी है उसे भी एक बर्ड स्टेचिस हमें लगाना चाहिए, जिससे कि जो पंछी है हमारी फसलों में जो भी इल्लियां हैं उसे चुन चुन कर फिर वो खाती रहती हैं।
1: यानी बर्ड पर्चर
0: हाँ,
1: लगाएं,
0: बर्ड
1: टी
0: पंचर
1: आकार का।
0: हमेशा टी आकार का लगाने चाहिए जिसके ऊपर बैठकर पंछी आराम से फिर वो कीट जो है ढूंढ के खा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी मुख्य फसल है उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप खूब ज्यादा मिलता है, तो रस
1: अक्सर बरसात में
0: अक्सर
1: तो
0: बरसात में तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा भी होता है, तो रस चूसक कीट जैसे एफिड जैसिड हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो नीला या पीला चिपचिपा फंदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
1: यानी फेरोमोन ट्रैप।
0: फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, ये जो रस चूसक कीट है उनके लिए नीले चिपचिपे या पीले चिपचिपे फंदे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि यह रस चूसक कीट आकर्षित होकर उसमें चिटक जाते हैं और फिर वो उड़ नहीं पाते हैं, इस तरह से इसका प्रबंधन होता है। इसके सिवाय जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम से बनता है,
1: यानी नीम कौड़ी का शस्त्र।
0: हाँ, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो जैसा कि हम जानते हैं नीम हमेशा कड़वा होता है, तो ये भी है जो रस चूसक कीट है उनके बढ़ावा को कम करता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सफेद मक्खी हो गई या रस चूसक कीट का जो आर्थिक हानि स्तर ऊपर जा रहा है, तब हमें जो फेनप्रोपैथ्रिन 30 EC नामक दवा है उसका 5 से 7 मिली प्रति 15 लीटर वाली टंकी के दर से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए।
1: या कोई दूसरी दवा?
0: दूसरी दवा भी है जैसे कि स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC है, इसका भी 12 मिली प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर पानी की दर से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। सुबह सुबह या फिर शाम को जब समय हो निगरानी बहुत ही जरूरी है, तभी और तभी हमें कीट का पता चल जाता है। और सबसे अच्छा जब हम निगरानी करते हैं तो गंध पास हमें खेत में जरूर लगाना चाहिए। तो जो ल्यूसिनोड्स ऑर्बनलिस का ये गंध पास होता है बैंगन के लिए, तो वो हमें 3 से 4 प्रति एकड़ शुरू

0: आती अवस्था में सिर्फ निगरानी के लिए लगाना चाहिए। अगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नुकसान या जो पतंगे हैं इसके अंदर आकर्षित होके आ रही है, तो उसके बाद हमें जो प्रबंधन करने के लिए 30 से 40 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9924876728 9924867628 9924876728।
1: डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान, आज आप कार्यक्रम में आई और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सला भाई ने देखो, जब इतनी नीक बत कही सुनवाए दिन हुए तो हम देख रहे हैं कि आप मुस्काया रहे हो बहुत ज्यादा है।
3: काया न भैया, देखो सावन का महीना है और झूला पड़े हैं, सब बहनें अपने मायके में आके झूला झूल रहे हैं, तो हमारा मन कहा था भैया कि कजरी उजरी सुन लें जाए।
2: बिल्कुल, अपने पंचो बहन देखो कजरी सुनवाओ बहनी।
3: मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में कजरी तो सुना जाए और पंचो भैया भी सुने आनंद ले।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सरला बहनी,
7: हाँ भैया,
6: अपने बीच का किसान भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं और तना तना के नवाचार अपनी खेती में यहाँ अपनावत हैं।
7: ओम भैया, जो किसान होते ना, हम सब अपन खेती करत हैं, मुला की कुछ ऐसे किसान होते हैं जो नई तकनीकी अपनाए रहे हैं तो वे सबसे अलग हो जाते हैं और ऐसा सफल किसान भी रहते हैं।
6: तो देखो आज के किसान जो है अचल कुमार मिश्र भैया अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो आओ सुना जाए।
8: आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के बिजुआ ब्लॉक के मेड़ईपुरवा गांव से गन्ना उत्पादन से जुड़े अचल कुमार मिश्र भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप कृषि में विविधीकरण और खास करके मिठास फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय रकबा कितना है आपका गन्ने का?
9: नमस्कार, इसमें लगभग हमारे पास तो 20 एकड़ जमीन का रकबा मैंने गन्ना बो रखा है।
8: हाँ,
9: और संयुक्त रूप से हम ज्वाइंट फैमिली में खेती करते हैं।
8: तो जो 20 एकड़ है, कुछ शरदकालीन होगा कुछ बसंतकालीन होगा?
9: जी, कुछ शरदकालीन है और बसंतकालीन है, लेकिन ज्यादा रकबा जो हमारे पास है वो शरदकालीन गन्ने का है।
8: लगभग कितना?
9: लगभग 5 हेक्टेयर, 12.5 एकड़।
8: 12.5 एकड़ शरदकालीन गन्ना है
9: जी,
8: और लगभग 7.5 एकड़ आपका बसंतकालीन गन्ना है
9: जी।
8: कौन कौन सी वेराइटी आपके खेत में है इस समय?
9: इसमें जो नवीन प्रजातियों में है वो COLK 16202, COS 18231 और 14234 सामान्य प्रजाति का गन्ना है। साथ ही जो अर्ली में बहुत प्रमुख वैरायटी रही जिसकी गुड़ बहुत अच्छी बनती है, COJ 85 जो बहुत पुराना गन्ना है वो भी हमारे पास है।
8: तो इसमें फसल कैसी चल रही है?
9: फसल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पिछले वर्षों हमारे यहाँ लगातार तराई में ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए गन्ने के लिए हमारा जिला पहचाना जाता है। इस वर्ष बारिश थोड़ी कम है।
8: तो उसका असर क्या गन्ने की फसल पर है?
9: जी, उसका असर लगातार अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लगता है आने वाले दिनों में अगर बरसात कम होती है तो हम लोगों का उत्पादन घट सकता है।
8: लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है।
9: जी, अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन पिछले वर्षों में लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ मानसून आ जाता था। अब की मानसून की बरसात बारिश जो है लगभग 20 दिन लेट हुई है, इससे जो है काफी अधिक फसलें प्रभावित हुई हैं।
8: तो आप जीवन रक्षक सिंचाई करते रहे होंगे गन्ना में?
9: जी, लगभग हमारे पास विद्युत संचालित नलकूप हैं, उससे हम लगातार जो है सिंचाई करते रहे हैं।
8: इस समय हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं?
9: देखिए, पहली बरसात में सबसे ज्यादा समस्या जो है किसानों के सामने वो पोका बोइंग रोग की आती है।
8: आपके यहाँ है लक्षण?
9: जी जी, पोका बोइंग के लक्षण जब आते हैं तो गन्ने की ऊपर की जो पत्ती है वो लगभग एक मड़ोड़ सी जाती है, ऊपर से उसमें ऐठन आ जाती है
8: जी,
9: उसको पोका बोइंग रोग कहते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें तो वो बीमारी दूर हो जाती है और गन्ना बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन दे सकता है।
8: तो आपने ऐसा किया अपने गन्ना के खेत में?
9: जी बिल्कुल किया है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं किसानों को सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पोका बोइंग रोग है या पायरिला है, इसके लिए लगातार हम उनको कौन सी इंसेक्टिसाइड उनको डालनी है, कौन सी फंजीसाइड उनको डालनी है, इसके लिए लगातार उनको हम अपनी जो है सुविधा अनुसार उनको जानकारी दे रहे हैं।
8: यानी अपने अनुभव से उनको सलाह दे रहे हैं
9: जी,
8: कि जैसा आपने किया है वैसा वो भी करें ताकि उनको भी लाभ मिले।
9: जी जी।
8: अचल भैया, चूंकि गन्ना उत्पादन से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो गन्ने की बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
9: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारे लिए होता है बीज, क्योंकि देखिए बीज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा बीज

0: जो हमारा सबसे मेन चीज होती है जमीन के अंदर वो कार्बन होता है। वो कार्बन जो है 0.8 से ऊपर रहना चाहिए। प्रत्येक किसान को इस चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमको लगभग फसल के कटाई के बाद 1 महीना खेत भी छोड़ना है खाली, ताकि खेत खाली रहेगा तो उसकी कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ समय समय पर सड़ी लगभग 3 वर्ष की गोबर खाद का भी प्रयोग करना है, जिससे कि उसका कार्बनिक मैटर बढ़ जाए। अब बुआई में बीज के ऊपर जो है, बीज में आपको हमें सबसे पहले 10 माह का ही बीज लेना है,
1: जी
0: क्योंकि उसमें जो है शकरा की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारा बीज जमाव बहुत अच्छा लेगा। अब बीज को शोधन की बात आती है। शोधन के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक ले सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले सकते हैं। कई सारे कार्बिंडाजिम है, अमीडा क्लोरोपिड है, फिप्रोनिल है, ऐसी कई सारी थाइमेक्सोन सीएस,
1: जाम
0: जी, ये भी आता है CS30%। कई सारी ऐसे इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक आ गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। या आप जैविक रूप में शोधन करना चाहते हैं तो भी आप शोधन कर सकते हैं।
1: ट्राइकोडर्मास
0: ट्राइकोडर्मा से भूमि का शोधन कर सकते हैं, विभिन्न बैक्टीरिया से जो है आप जैव शोधन कर सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 8299 37 9800, 8299 37 9800, 82 99 37 98 00।
1: अपने अनुभव से और मिठास के किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: अच्छे बीज का उपयोग करें और जो मिट्टी जांच अवश्य कराएं, ताकि संतुलित उर्वरक दें। जिस चीज की जरूरत हो वही उर्वरक उसको दिया जाना चाहिए। इससे आपकी लागत घटेगी और लागत घटाने पर ज्यादा जोर दें, मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ें। खेती में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी है। विज्ञान के बिना अच्छी खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकगण अच्छी प्रजातियां देते हैं, अच्छी हमको कीटनाशक देते हैं, अच्छी फफूंदी नाशक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमको कम लागत में ही अच्छा उत्पादन मिल सके। लगातार वो प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास को जमीन के ऊपर उतारने का काम हमारा है। इस पर किसान भाइयों को ज्यादा जोर देना।
1: अचल कुमार मिश्र भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपने पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे कृषि से जुड़ गए, खास करके मिठास की फसल का उत्पादन आप लगातार कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और साथ में कृषि में विविधीकरण भी कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सलाह बहनी, अपन खेती पाती देखो मौसम पर आधारित रहते हैं, और अगर हम पंचन का मौसम के हाल पहले से पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपन खेती का काम पहले से निपटाए सके थे।
3: बिल्कुल भैया, तो काहे न मौसम का हाल जान लीन जाए। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम का हाल यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज यानी 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है, और कहूँ कहूँ तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के भी संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है, और यही के साथ कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गए है।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
5: परम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ओम भैया, अपन बैठकी कैसन लाग, यह के खातिर अपने पंच के प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, और प्रतिक्रिया दे खातिर चिट्ठी पाती जरूर लिखें।
2: तो कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
3: और अपने कार्यक्रम में मेल करे खातिर पता है फार्म एंड होम AIR।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कहाँ है?
6: जॉब पर हूँ।
5: बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
7: ऑफिस में?
5: मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है।
7: अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
7: भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा।
5: मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ।
8: योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण, कहा विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए

0: 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
2: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।
3: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
1: ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभू कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉक्टर लोकेश M को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि

0: केदारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।
1: ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इंक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट।
2: बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर आते कांवड़िए बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार का गाया ये गीत। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत बप्पी लहड़ी का है, फिल्म है आज का अर्जुन।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, अपने रेडियो हम सफर रुखसार नाच के साथ। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का गाया हुआ गीत, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिंद का है, फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

साधना सरगम की आवाज़ में हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं। गीत लिखा है कुलवंत जानी ने, धुन तैयार किया है राजेश रोशन ने, फिल्म है धर्मयुद्ध।

नाचे नागिन गली गली। जी हाँ, अभी आप इसी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे साधना सरगम की आवाज़ में। गीत अनजान के थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12

बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में यह विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष के हंगामे

के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्रवाई चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष

0: एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विधानमंडल समीक्षा।
1: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
2: विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित रही। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में धरना देते हुए नारेबाजी करते रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच 39,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 6.47% है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इससे सरकार नई विकास परियोजनाओं के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा सकेगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए करीब 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए लगभग 1,094 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग

0: सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। शोर शराबे के बीच नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। सपा सदस्यों को आगाह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी के बाद 20 सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो खींचने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मना करने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही बाकी सदस्यों को भी चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस तरह का आचरण करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नेता सदन ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। इस बीच सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आज का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों से अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कार्य कर रही है, जिसका समय समय पर अनेक माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे जनता लाभ उठा सके। सदन में आज प्रश्न पहर शांतिपूर्वक चला। सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न किया। औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करा लें कि ये MOU कराने लायक है या नहीं। शून्य प्रहर में नियम 39 में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग में विनियमितीकरण से वंचित तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण करने के संबंध में सूचना दी, जिस पर उमेश द्विवेदी समेत अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर शासकीय आदेश जारी किया जा चुका है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सदन की जो समिति बनी हुई है, ये मामला उसमें उठाएं और बैठक कर सम्मानजनक रास्ता नियम के दायरे में निकालने का प्रयास करें। सभापति ने ये भी निर्देश दिया कि नेता सदन अगस्त के माह में ही ये बैठक कर ले। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। शून्य प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के SCERT व डायट में कार्यरत प्रवक्ताओं के ग्रेड पे 6,000 रुपए का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप

0: सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस मामले को भी शिक्षा के मामले सुलझाने के लिए नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम विधानमंडल समीक्षा, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेशा खिदमत है गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खान का गाया यह कव्वाली।

0: म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए अय्याब को लिए चलते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और अब समाचार विस्तार से संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी

0: अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री

0: सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है।

0: Medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to men's double second round at Korea Masters Tournament in Assam. And that is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया ये गीत फिल्म दो बदन से। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत रवि का है।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में शागिर्द फिल्म से ये गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र के डी बनकर।

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल भर में।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, बोल शैलेंद्र के लिखे हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: इसी के साथ ही कार्यक्रम भोले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक का गाया हुआ क्रांति फिल्म से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है।

क्या यही प्यार है? जी हाँ, अभी आप इसी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में। शब्द रचना जलीस रशीद की थी, संगीत साजिद वाजिद का था। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं इंतहा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है राहत इंदौरी।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए, अपनी रेडियो हम सफर रुखसार नाच के साथ। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई हुई धुन पर आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। इस गीत के लिए अपनी आवाज़ दी है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। फिल्म है प्रेम ग्रंथ।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की पुरकशिश आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म से यह गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत HD बर्मन का था। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है।

0: DARPA. DARPA. DARPA.
1: खेल प्रेमियों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। मैं हूं अवधेश। अब बात होगी उन शूरवीरों की जिन्होंने सात समंदर पार स्कॉटलैंड की धरती पर तिरंगे की शान बढ़ाई है। आज हम बात करेंगे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की यानी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चले इन खेलों में दुनिया भर के 74 देशों ने हिस्सा लिया। इस बार खेलों का आयोजन पहले से थोड़े अलग और सीमित रूप में किया गया, जिसमें सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया गया था। 10 खेलों के इस छोटे लेकिन बेहद कड़े महाकुंभ में भारतीय दल ने जो कमाल किया है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एक ऐसा संस्करण जहां भारत के कई पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेल कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे। शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय दल ने शानदार जज्बा दिखाया और 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर अभियान समाप्त किया। 122 खिलाड़ियों के दल में से 38 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे, जबकि गुलवीर सिंह 2 पदक जीतने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी बने। जरा एक नज़र भारत के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कुल प्रदर्शन पर। भारत के 122 खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सीमित खेलों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। अगर स्पोर्ट्स वाइज प्रदर्शन की बात करें तो मुक्केबाजी और एथलेटिक्स भारत के सबसे सफल खेल रहे, जहां दोनों में 10-10 पदक हासिल हुए। बॉक्सिंग में भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत जीतकर इतिहास रचा। वेटलिफ्टिंग से 8 पदक, जबकि पैरा एथलेटिक्स ने 6 पदकों के साथ दमदार योगदान दिया। जूडो में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया, जबकि पैरा पावर लिफ्टिंग से भी एक कांस्य पदक आया। कुल मिलाकर भारत ने 39 पदकों के साथ ग्लासगो अभियान का शानदार समापन किया। अगर इस अभियान का सबसे बड़ा सितारा कोई खेल रहा तो वो था बॉक्सिंग। भारतीय मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड 10 पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 7 स्वर्ण और 3 रजत पदकों के साथ भारतीय बॉक्सरों ने साबित कर दिया कि अब कॉमनवेल्थ मंच पर मुक्केबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। एथलेटिक्स में भी भारत ने कई यादगार पल दिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में 2 पदक जीतकर लंबी दूरी की दौड़ में भारत की नई पहचान बनाई। वहीं तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डिकैथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जूडो और पैरा स्पोर्ट्स भी भारत की सफलता की बड़ी कहानी बनकर उभरे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मीराबाई चानू ने एक बार फिर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा, शर्मिला ढांकर और दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत को कुल 7 पदक दिलाए और ये साबित किया कि भारतीय पैरा खेल लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर पदकों की तुलना की जाए तो ग्लासगो में भारत ने बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 22 पदक कम जीते, लेकिन ये भी सच है कि इस बार प्रतियोगिता में केवल 10 खेल शामिल थे और भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले कई खेल कार्यक्रम से बाहर थे। बर्मिंघम में जिन 6 खेलों से भारत को 30 पदक मिले थे वो इस बार आयोजित ही नहीं हुए। ऐसे में 39 पदकों का ये प्रदर्शन केवल आंकड़ों से नहीं

0: बल्कि नए खेलों में उभरती भारतीय ताकत की कहानी भी कहता है। ग्लासगो ने भारतीय खेलों को नए सितारे दिए, मुक्केबाजी ने नया इतिहास लिखा, जूडो ने नई शुरुआत की, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स ने नई उम्मीदें जगाई और अब इन खिलाड़ियों की नजरें अगले बड़े लक्ष्य एशियन गेम्स पर हैं। यही है नए भारत के खेलों की पहचान, लगातार आगे बढ़ना और हर मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक ओर भारतीय खिलाड़ियों ने 39 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को ही सौंप दिया गया। अब 2030 में खेलों के 100वें यानी कि शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। 2010 दिल्ली के बाद ये दूसरा मौका होगा जब भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: ग्लासगो में 11 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य समापन हुआ, लेकिन समापन समारोह का सबसे यादगार पल वो था जब कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा गया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारत की ओर से इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
2: ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है, भारत का झंडा शान से लहराया है। हालांकि ये वक्त हमारी जो गेम्स में हमें अधिकतम मेडल्स मिलते थे वो गेम्स को कट डाउन की गई है, फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने नई गेम्स में अपनी जगह बना ली और जगह बना के भारत का तिरंगा और शान से लहराया है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और साथ ही अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। कॉमनवेल्थ सेंटेनरी इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट है और अहमदाबाद उसे पूरी तरह से तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण का आयोजन करेगा और इसकी मेजबानी करेगा भारत का अहमदाबाद। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की दो बार मेजबानी करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का सफल आयोजन किया था। अब दो दशक बाद दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत पर होंगी। अहमदाबाद केवल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा बल्कि भारत की खेल क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन कौशल का भी वैश्विक प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और गुजरात सरकार इसे भविष्य के खेल भारत की नींव मान रही है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के ओलंपिक सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई खेल सुविधाएं, विश्व स्तरीय स्टेडियम, कोचिंग इकोसिस्टम और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के विकास की योजनाएं आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। ग्लासगो में भारत ने 39 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और अब उसी ग्लासगो से भारत को मिली है एक नई जिम्मेदारी, कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी। 2010 में दिल्ली ने दुनिया को भारत की आयोजन क्षमता दिखाई थी, अब 2030 में अहमदाबाद उस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। अगला पड़ाव अहमदाबाद 2030।
1: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज जहां कप्तान श्रेयस अय्यर की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे को 3-0 से सीरीज अपने नाम की। हरारे में जो हुआ वो एक परफेक्ट कमबैक की कहानी है। आज हम बात करेंगे सीरीज के उस तीसरे और आखिरी मुकाबले की जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैच की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। इस मैच का असली हीरो रहा वो खिलाड़ी जिसकी उम्र जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, 15 साल का चमत्कार वैभव सूर्यवंशी। हरारे की उस धीमी पिच पर जहां रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता, वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 49 गेंदों में 81 रन की वो आतिशी पारी, 8 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने अपना अर्धशतक तो शानदार अंदाज में पूरा किया ही बल्कि ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की एक बेहतरीन और ठोस साझेदारी भी की। ईशान किशन ने भी 29 रनों का अहम योगदान दिया, हालांकि वो एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए। इसके बाद हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों की एक तेज पारी खेली और अंत में हमारे अपने फिनिशर रिंकू सिंह ने 25 रन जोड़कर स्कोर बोर्ड को रॉकेट की तरह रफ्तार दे दी। नतीजा, भारत ने 20

0: ओवर में 192 रनों का एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्बाब्वे के सामने था 193 रनों का लक्ष्य। T20 क्रिकेट में 193 रन चेज करना कभी आसान नहीं होता, और जब सामने मयंक यादव जैसी एक्सप्रेस पेस हो तो बल्लेबाजों के पसीने छूटना तय है। जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत ही लड़खड़ाती हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही अपना शिकंजा कस लिया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेन करन को 20 रन पर मयंक यादव के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, असली कहर तो बरपाया मयंक यादव ने। अपनी आग उगलती गेंदों से मयंक ने जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अपने 4 ओवर के कोटे में महज 29 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। यश ठाकुर ने भी मयंक का बखूबी साथ निभाया और 45 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अंततः 20 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर महज 157 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर लिया। इस 35 रन की शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। भारतीय बैडमिंटन को एक नया सितारा मिल गया है। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी वर्ग की सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: महज 17 साल और 222 दिन की उम्र और एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की विश्व नंबर 21 नगुएन थुई लिन को सीधे गेमों में 21-16, 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता। इस जीत के साथ तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन गई और भारत का 17 वर्षों का इंतजार भी खत्म कर दिया। साल 2008 में साइना नेहवाल के बाद अब तन्वी शर्मा इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक गेम गवाया और अपने शानदार स्मैश, सटीक नेट प्ले और बेहतरीन रणनीति से सभी को प्रभावित किया। वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रह चुकी तन्वी शर्मा का ये खिताब भारतीय बैडमिंटन के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत माना जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है। भारतीय बैडमिंटन को एक और बड़ा सितारा मिल गया है और दुनिया ने एक नया नाम याद कर लिया है, तन्वी शर्मा।
0: अब बात एक ऐसे चमकते सितारे की जिसने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी तक का शानदार सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर नल्लापुर रेड्डी श्री चरणी की। आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2004 में इस टैलेंटेड खिलाड़ी का जन्म हुआ था, यानी आज हमारी चैंपियन श्री चरणी का 22वां जन्मदिन है। उनके इस खास दिन पर नजर डालते हैं उनकी अब तक की शानदार यात्रा पर। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एरामला पल्ली गांव में जन्मी चरणी YSR कड़पा जिले से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं था। छठी क्लास में उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी, जो रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन्होंने चरणी को बैडमिंटन की तरफ प्रेरित किया था। चरणी ने खो खो में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को तो उन्हें क्रिकेट के मैदान पर ही चमकते देखना था। उनके चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उन्हें खेल की ट्रेनिंग में पूरा सपोर्ट किया। दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना और युवराज सिंह को अपना आइडल मानने वाली चरणी ने जल्द ही अपनी स्पिन से जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिसंबर 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इस युवा प्रतिभा पर दाव लगाया और उन्हें 55 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बना लिया। मार्च 2025 में सीनियर विमेंस मल्टी डे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया बी के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। साल 2025 उनके लिए सचमुच एक सुनहरे सपने जैसा रहा। अप्रैल 2025 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इसके बाद जून 2025 में जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी T20 डेब्यू करने का मौका मिला तो चन्नी ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए। श्रावंती नायडू के बाद T20 डेब्यू में 4 विकेट लेने वाली वो सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बनी। और उनके करियर का सबसे गौरवशाली पल तब आया जब उन्होंने 2025 के ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। अपनी बेहतरीन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को खामोश कर दिया और विश्व कप ट्रॉफी उठाने वाले स्क्वाड का एक चमकता हुआ हिस्सा बनी। आज अपने

खेलों में पूर्व से ही काफी अग्रणी रहा है, जहां कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम विश्व स्तर तक रोशन किया है। चूंकि जनपद रामपुर एक नवाबों के शहर से भी जाना जाता है, जहां खेल बहुत ही अपने चरम पे रहा है, वो चाहे उसमें हॉकी रहा हो, फुटबॉल रहा हो, वॉलीबॉल रहा हो, कबड्डी रहा हो, एथलेटिक्स, ऐसे बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि अपने चरम पे रहे हैं। और आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे चमकते सितारे खिलाड़ी के रूप में आज निकल कर जा रहे हैं, उभर कर निकल रहे हैं, जिसमें जनपद से मैं समझता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अवसर मिला है, जो आज खेल के माध्यम से बहुत सारे विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो अपनी आज तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी खेल के रूप में हो। जनपद रामपुर चूंकि राज्य स्तरीय की जब हम बात करते हैं, तो देखिए मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं कि जनपद रामपुर में कई खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और विभिन्न आयु वर्ग में आयोजन हुए हैं, जिससे कि सभी खिलाड़ियों को अवसर मिला। और निश्चित जब हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होती है किसी भी खेल की, उससे जो जनपद के खिलाड़ी और आसपास के खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका देख कर स्किल सीखते हैं और उनका भी मन होता है कि मैं भी खेलूं और एक बड़ा खिलाड़ी बनूं। क्योंकि जिस समय वो मंच पर सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उस समय जो भी दर्शक के रूप में आते हैं, तो वो भी उनके पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन कोई भी हो, वो भी चाहता है, और बच्चा स्वयं भी देख कर उससे मोटिवेट होता है और उसके अंदर एक भावना, खेल भावना जुड़ती है कि मैं भी खेल खेलूंगा। तो जनपद रामपुर चूंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं राज्य स्तर पर चमकते सितारों की, जनपद रामपुर में एक उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निर्देशन में हॉकी स्टेडियम नवाब जुल्फिकार अली स्टेडियम बना हुआ है, जिसमें बालक हॉकी छात्रावास स्थापित है। विगत कई वर्षों से ये संचालित है, जहां पर हॉकी एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से चयनित होकर हमारे खिलाड़ी चयन होकर आते हैं, उनकी सरकार के द्वारा समस्त सुविधाएं, चाहे वो खेल हो, चाहे आवास हो, ग्राउंड हो, उनकी शिक्षा हो, उन सभी पर पूरी तरह से सरकार उनका जो खर्च होता है उसका वहन करती है, उनका स्वास्थ्य हो, मतलब तमाम जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, खेलों की सामग्री हो चाहे जो भी हो, ऐसे कई छात्रावास उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, कई खेलों के हैं, जिसमें जनपद रामपुर हमारा हॉकी छात्रावास संचालित है। जहां पर मैं चमकते सितारों की बात करूं, तो राज्य स्तर पे तो लगभग हमारे यहां से प्रतिवर्ष करीब करीब जनपद की अगर हम बात करें तो विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रतिभाग कर रहा है और कई खेलों में मेडल भी लाते हैं बच्चे खिलाड़ी, जो कि जिसे हमारा जनपद रामपुर गौरवान्वित होता है, जिनका उत्कर्ष प्रदर्शन से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हॉकी की अगर बात करें यहाँ पर, तो पूर्व में हमारे जनपद रामपुर से छात्रावास के कई खिलाड़ी राज्य स्तर से खेलते हुए चयनित होकर वो राष्ट्र स्तर तक भर उन्होंने प्रतिभाग किया और राष्ट्र स्तर पर स्कूल नेशनल खेलों में भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कई खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो खेल आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता रहे, उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया, नगद धनराशि से सम्मानित किया, जिसमें हमारे यहाँ अर्पित कुमार, कमर फैयाज और मानवेंद्र, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगद धनराशि देकर उनको सम्मानित किया, चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से खिलाड़ी स्टेट और स्टेट से नेशनल स्तर तक जाते हैं, खेल कर आते हैं। इस वर्ष भी कई हमारे खिलाड़ी, आयुष भट्ट हैं, पूजन तिवारी हैं, आर्यन रावत हैं, ये विभिन्न आयु वर्गों में ऐसे खिलाड़ी चयन होकर जाते हैं और खेलकर हमारे जनपद रामपुर का नाम रोशन करते हैं। राज्य स्तर पर हॉकी के अलावा भी कई खेलों का आयोजन होता है। विगत वर्ष में जनपद रामपुर में ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिसका आयोजन किया गया, जनपद रामपुर उसका आयोजक रहा, खेल विभाग ने उसका बढ़ चढ़कर और प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छा आयोजन कराया गया, जिसमें जो बाहर से टीमें आने वाली टीमों ने भी इसकी भूरभोर प्रशंसा की। वॉलीबॉल के साथ साथ फुटबॉल का भी आयोजन होते रहते हैं। इसी तरह से पिछले लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था, चूंकि बास्केटबॉल एक खेल बहुत ही अच्छा खेल है, जिसकी सुविधाएं अपने जनपद में भी हैं, जिसका आयोजन डीएमए स्कूल में किया गया और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। जो सुविधाएं हमारे जनपद रामपुर में जो मेहमानों की मेहमानदारी होती है, जिससे खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित होकर जाता है और वो हमेशा

रामपुर में आयोजनों में शामिल होने के लिए आतुर रहता है। इसी तरह से कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, विभिन्न ऐसे खेल हैं जिनके हमारे जनपद रामपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ, और उन खेलों के आयोजन से ही हमारे जो चमकते हुए सितारे उसमें से चयन होकर आगे राज्य स्तर पर भी खेलने पहुंचे हैं। और अब बात आती है जो विद्यालय हमारे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा हमारा सीबीएसई बोर्ड है। इस जनपद रामपुर में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपस में ये कंपटीशन हो रही है, खेलों की कंपटीशन है कि मैं अधिक आयोजन कराऊं या आप अधिक आयोजन कराएं। दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके पीछे कारण मैं समझता हूं कि यहां की सुख सुविधाएं, यहां के जिला प्रशासन का सहयोग, यहां के जो माननीय हैं हमारे उनका सभी का सहयोग, उन्हीं सभी का योगदान, जिसके वजह से हम बाहर की जो टीमें आती हैं उनको एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं, बहुत अच्छा खेलने का अवसर दे पाते हैं उनको, खेल मैदानों की अच्छी एक सुविधाएं दे पाते हैं, आवासीय व्यवस्था दे पाते हैं उनको, सुरक्षा दे पाते हैं। मैं समझता हूं कि जनपद रामपुर में जो भी खिलाड़ी आएगा वो मायूस होकर नहीं जाएगा, वो निश्चित ये सोच कर जाता है कि मुझे पुनः एक अवसर मिले, मैं रामपुर में जरूर प्रतिभाग करूंगा। जिसमें पूर्व में भी सीबीएसई जोनल, जिसमें हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन जनपद रामपुर में पहले पूर्व में डीएमए ने कराया था, विगत वर्ष पिछले साल जो जोनल सीबीएसई जोनल का जो आयोजन कराया गया स्मार्ट इंडियन पब्लिक स्कूल के माध्यम से, जिनका आयोजन कराया गया, जिसका खेल मैदान हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया पर स्थित खेल मैदान पर आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार जिसका आयोजन किया गया। विगत वर्ष के सफल आयोजन को देखते हुए पुनः इस वर्ष भी स्मार्ट इंडिया स्कूल को ये कार्यक्रम कराने का अवसर मिला, जिससे जनपद भी गौरवान्वित होता है और उनके सफल आयोजन से भी खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं और खिलाड़ियों को एक और अच्छा अवसर मिल पाता है। जो कुछ खिलाड़ी बाहर नहीं जा पाते हैं वो मैं समझता हूं यहां पर खेलकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी वार्ता स्कूल विद्यालयों से होती रहती है बीच बीच में, जिन्होंने बताया है कि जनपद की इस सीबीएसई प्रतियोगिता के आयोजन में लगभग 10 से 12 या 15 टीमें करीब प्रतिभाग करती हैं। निश्चित एक हॉकी खेल में किसी जनपद की विद्यालयों की टीमें 10 से 12 टीमें अगर प्रतिभाग करती हैं, निश्चित वो खेल अपने अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, जनपद बढ़ रहा है उस खेलों में। और चूंकि मैं जैसा बता रहा हूं विगत 3 वर्षों से डीएमए दयावती मोदी स्कूल, उसके बाद सिम्स स्कूल लगातार दूसरी वर्ष इसका आयोजन कर रहा है सीबीएसई जोनल, क्योंकि सीबीएसई जोनल में लगभग हमारा उत्तराखंड पूरा और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसमें शामिल होते हैं, इस तरह का आयोजन जो यहां पर होता है, और जिससे कई बच्चे, कई विद्यालयों के बच्चे जो हैं बाहर जाकर इससे सीबीएसई नेशनल और सीबीएसई नेशनल के बाद वो अन्य खेलों में भी हिस्सा लेते हैं, अपने प्रतिभा को निखारते हैं। खेलों को देखते हुए खेल अवस्थापनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जनपद रामपुर में वर्तमान में खेल अवस्थापनाएं बहुत बढ़ गई हैं जो खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। मैं समझता हूं कि आपके जनपद रामपुर में एक ऐसा जनपद जहां पर 3-3 स्टेडियम इस समय संचालित हो रहे हैं, नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया जहां पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ ब्लू कलर का लगा हुआ है, बहुत ही प्रभावित करता है सभी खिलाड़ियों को, नवाब जुल्फिकार के बाद हमारा शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी जहां पर विभिन्न खेलों की अवस्थापनाएं इस समय निर्मित हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, जिम हो, आपका वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, पिकल वॉल है, बास्केटबॉल का, ये अभी सिंथेटिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उससे कहीं बड़ी हमारे जनपद रामपुर में जो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा हमको एक सौगात के रूप में मिला है जो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, जो इसी वर्ष अभी जिसका कार्य प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष में एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण होकर खिलाड़ियों के मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगन खेड़ा जहां पर हॉकी का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तैयार बना हुआ है, जहां पर भी हमारा हॉकी प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। मैं पूरे जनपद के स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों से साथ ही साथ उनके जो बच्चे हमारे हैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक इन अवस्थापनाओं का, खेलों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक जनपद से निकलकर हमारे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जनपद हमारा गौरवान्वित हो। बात करेंगे हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में। जैसा कि मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि जनपद रामपुर हमारे खेल स्टेडियम में अग्रणी है। जनपद रामपुर में चारों साइड पर विभिन्न खेल मैदान है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो एक सीजन है, खेलों का सीजन है, पूरी साल का ये निचोड़ खेलों का होता है,
चूंकि

0: 2 से 3 माह हमारा अक्टूबर तक पूरा चलता है, जिसमें विभिन्न खेलों के राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय आयोजनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें जनपद रामपुर में पूर्व में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले वर्ष, और इस वर्ष उसके सफल आयोजन को देखते हुए और जिला प्रशासन के सहयोग को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि होगी। इस जनपद रामपुर में माध्यमिक खेलों के आयोजन शुरू हो गए हैं, ये 4 अगस्त से, बल्कि अभी स्टार्ट ही हो चुके हैं, 4 अगस्त से लेकर और भी अन्य खेल, जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 खेलों के जो आयोजन होने हैं पूरे प्रदेश में, जो राज्य स्तरीय तक आयोजन होंगे, जिसमें जनपद की टीम और मंडल की टीमों का चयन होना है। पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ सभी खिलाड़ी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए चयन होने के लिए अपना अभ्यास करते हैं और वहां पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जनपद रामपुर खेलों में बहुत ही अग्रणी है, और इस वर्ष इस जनपद रामपुर में आपको CBSE जोनल का आयोजन मिला है, जो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, जिसका आयोजन CBSE स्कूल, स्मार्ट इंडियन स्कूल जो कर रहा है, और जिसका नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनवड़िया में प्रतियोगिता का जो मैच है वो खेले जाएंगे। ये जो आयोजन होगा, जिसमें पूरे आपके जनपद के लगभग 10 से 12 टीमें हैं, और उसके अलावा जो जोन है पूरा, वो टीमें यहीं पर आएंगी और प्रतिभाग करेंगी। इस वर्ष भी माध्यमिक का जो राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता होनी है हॉकी की, जिसमें लगभग 107 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। चूंकि हॉकी खेल है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, जिसमें 18 खिलाड़ी, टीम मैनेजर, उनके कोच सम्मिलित रहते हैं, लगभग 20 की एक टीम तैयार होती है, और ये जनपद के लिए वास्तव में खेलों का मेला है, बहुत बड़ा एक मेला खेलों का हो रहा है, जहां पर 107 टीमें, आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, वो चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा है, इकट्ठा होकर हमारे जनपद रामपुर में आएगा और उसको देखेगा, हमारे यहाँ की अवस्थापनाओं को देखेगा, खेल मैदानों को देखेगा, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखेगा। मैं समझता हूं कि इस मेले में जो शामिल होंगे उन सबकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमारा, हमारे जो माननीय हैं सभी लोगों का, हम लोग को आशीर्वाद है, हम लोग को सहयोग है, और उसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक हम लोग उदाहरण बनकर तैयार होंगे कि जनपद रामपुर में इतना अच्छा, इतना शानदार हम लोगों ने आयोजन कराया है। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा से ये जो आयोजन कराया, 6 अगस्त 26 को सिविल सर्विसेज खेलों का, जिसमें 19 खेल हैं, जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स का आयोजन बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम रामपुर में किया जा रहा है। जनपद के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये चयन ट्रायल रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए खेल विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो मंडल और मंडल से राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक ये प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: दोस्तों, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। मैं हूं अवधेश, आपसे चाहूंगा अनुमति।
2: खेल दर्पण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात, और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आई मिलन की रात फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ ने।

अभी आप सुन रहे थे सनम बेवफा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं प्यासा सावन फिल्म से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर और अलका याग्निक ने। गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और उनके साथियों की आवाज़ में हिना फिल्म से ये गीत। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इसी के साथ ही कार्यक्रम आपकी बात अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने